हिमाचली गीत और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। ये लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं रीता शर्मा की आवाज में।

पहाड़ों के स्वर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं शांति विष्ट और साथियों की आवाजों में।

इसी लोकगीत के साथ पहाड़ों के सुर कार्यक्रम में बस आज इतना ही। कार्यक्रम संपन्न करने की माया को अनुमति दीजिए। श्रोताओं नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इधर प्रदेश में इस अवसर पर वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन चयनित शिक्षण संस्थानों के साथ मंडी कॉलेज में भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए स्थानीय खेलो इंडिया संवाद और युवा संवाद होगा, जिसमें खेल प्रतिभा, ओलंपिक 2036, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा जैसे विषयों पर विचार साझा किए जाएंगे। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज छठे दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसके बाद शून्यकाल में विधायकों द्वारा क्षेत्र के मुद्दे उठाए जाएंगे। आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस पर सदन में विधायकों द्वारा 5 बड़े संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे, जिस पर चर्चा होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के छठे दिन की कार्यवाही आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसके बाद शून्यकाल में विधायकों द्वारा क्षेत्र के मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सदन में 2 बड़ी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिनमें पहली हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड की 17वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 और दूसरी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे। वहीं 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज सदन में लाए जाएंगे, जिनमें नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के संचालन और उसकी लीज अवधि बढ़ाने से पैदा हुई स्थिति पर सरकार का ध्यान खींचेंगे। वहीं ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिकल कामों के टेंडर इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों को ना मिलने और इलेक्ट्रिकल विंग को सिविल विंग में मिलाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच अब हिमाचल प्रदेश में भी इस खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में कल स्वाइन फ्लू के 4 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वायरस ने सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लिया है। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि कल अस्पताल में स्वाइन फ्लू के कुल 8 सैंपलों की जाँच की गई, इनमें से 4 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित मरीजों में 72 और 85 वर्ष के 2 बुजुर्ग और 7 माह व 1 साल के 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और सभी से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। हमीरपुर के नादौन खंड की 63 ग्राम पंचायतों में नियमित कूड़ा कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस विकास खंड में 14 ई रिक्शा उपलब्ध करवाए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
3: विकास खंड नादौन की 63 ग्राम पंचायतों में अब नियमित कूड़ा कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू होगी।

0: योजना के तहत 63 पंचायतों को 14 क्लस्टरों में बांटा जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में 3 से 5 पंचायतें शामिल होंगी और एक ई रिक्शा तैनात रहेगा। इसके लिए दिनवार शेड्यूल और रूट निर्धारित किए जाएंगे। वाहन गांव गांव पहुंचकर घरों और अन्य स्थानों से कचरा एकत्रित कर निर्धारित डंपिंग साइट पर पहुंचाएंगे। ई रिक्शा का संचालन और रखरखाव ग्राम पंचायतों के जिम्मे रहेगा। प्रत्येक पंचायत को इसके लिए सालाना 1 लाख रुपए का बजट उपलब्ध कराना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित कचरा संग्रहण व्यवस्था सुचारू रूप में मदद मिलेगी। वहीं ई रिक्शा के नियमित संचालन से ग्रामीणों को कूड़ा फेंकने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: लाहौल स्पीति के राज्य स्तरीय 3 दिवसीय लादरचा मेले का काजा में भव्य समापन हुआ। लाहौल स्पीति की उपायुक्त मेले के समापन अवसर पर उपस्थित रहीं। इस दौरान उन्होंने मेले में प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: राज्य स्तरीय 3 दिवसीय लादरचा मेले का काजा में भव्य समापन हुआ। उपायुक्त लाहौल स्पीति किरण बिधाना ने मेले का विधिवत समापन करते हुए कहा कि मेले और त्योहार हमारी प्राचीन संस्कृति परंपराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस अवसर पर उपायुक्त ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित रेफरल ड्रॉ के विजेताओं को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लादरचा मेले के समापन समारोह को यादगार बना दिया। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद रणसिंघा, लकड़ी की नक्काशी और हस्तनिर्मित कालीनों को जीआई टैग मिलने के बाद इनके कारीगरों ने कल लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जीआई टैग से हिमाचली उत्पादों की पहचान और प्रामाणिकता मजबूत होगी और कारीगरों को बेहतर बाजार और आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने गुणवत्ता, ब्रांडिंग, ई कॉमर्स और विपणन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। महक पंजाब दी कार्यक्रम सुन रहे सारे श्रोतियां नु साडा सत श्री अकाल ते सारियां दा कार्यक्रम च स्वागत है। गाए कार्यक्रम दी शुरुआत असी कर रहे हां इस पंजाबी गीत दे नाल।

जी दोस्तों, पंजाबियों की खास पहचान दिलदारी, नाल बैठना, हसना, गप्पा मारनिया, जिंदगी नू खुल के जीना, यही तो पंजाबियत का अंदाज है। तो आओ फिर अगला पंजाबी गीत सुनिए, आनंद लईए इस गीत का।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी ट्यून किता होया है आकाशवाणी धर्मशाला ते तुसी सानू नाल नाल सुनदे पे हो प्रसार भारती दी ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते भी ते कार्यक्रम च हुण वेला है एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक दा।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
0: जी कार्यक्रम महक पंजाब दी विच फिर सारे श्रोतियां दा एक बारी स्वागत ते एलो जी हुन हाजिर हैगे अगला पंजाबी गीत लैके तुहाडे लई।

दोस्तों कुछ गीत जिहड़े होंदे ने ओह सुने नहीं जांदे, ओह गीत जिहड़े होंदे ने ओह माहौल बना देंदे ने। ते आवाज़ नूं थोड़ा पधा लो ते इस गीत नाल हुण अपना मूड बना लो ते थोड़ा हस लो ते थोड़ा गा लो।

चंगा जी दोस्तों हुण वेला तुहाडे कोलों इजाजत लैण दा। उम्मीद करदे हां तुहानूं अज दा इह कार्यक्रम पसंद आया होवेगा। फिर मिलांगे इहो जिहे होर वधिया गीतां नाल ते होर गल्लां नाल ते होर मस्ती दे नाल। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
2: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
2: कभी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
2: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
2: अजीत जी चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहाँ मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
1: क्या बात है, जहाँ मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रहे हैं आप?
2: नहीं नहीं अजीत जी बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहाँ के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
2: जी चलिए श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछ

0: और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर।
1: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है।
0: जी
1: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11,900 से लेकर 12,000 मिलीमीटर तक,
0: जी
1: यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
0: 12 मीटर, यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा।
1: जी। तो बिमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
0: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
1: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है।
0: जी, अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
1: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
0: जी,
1: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
0: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं।
1: जी
0: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादोह यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
1: इंग्लिश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
0: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
1: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। मिमलेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
0: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
1: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते।
0: जी,
1: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
0: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
1: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
0: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
1: भला वो क्या?
0: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
0: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिन राम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिन राम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक

0: एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
6: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
6: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
6: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
4: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
6: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
4: हाँ।
6: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
4: बिल्कुल।

0: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा,
0: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
2: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओह,
0: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
2: वही, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मियां मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी, और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
8: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
9: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
10: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
11: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
10: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
12: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था।

0: उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
2: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
3: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
4: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
3: अच्छा।
4: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
3: अच्छा।
4: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
3: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
4: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
2: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों और बहनों, जय हिंद। सीमा पर तैनात वो हौसला जिसे मौसम भी डिगा नहीं पाता, वो जज्बा जिसके आगे मुश्किलें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं, ऐसे हौसले और ऐसे जज्बे को हमारा शत शत नमन। और इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ सभी सैनिक भाई बहनों का और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सैनिकों के लिए में स्वागत है। आप जहाँ भी हैं सैनिक साथियों, हमारी ये आवाज़ और हमारे कार्यक्रम के आज के ये गीत आप तक पहुँचें और आपके दिन में कुछ और खुशी के लम्हे हम भरने की कोशिश करेंगे इन गीतों के जरिए। तो शुरुआत करते हैं मेहरबान फिल्म के इस बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ, और अनुराधा पौडवाल सोनू निगम ने इस गीत को गाया है।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सैनिक साथियों आपको सुनवा रहे हैं। रंग फिल्म का ये गीत है अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजें।

सैनिक साथियों, आपके मनोरंजन की कोशिश में हम इस वक्त प्रसारित कर रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से कार्यक्रम सैनिकों के लिए। और उम्मीद करते हैं हम जो गीत बजा रहे हैं यहाँ से, वो आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो लेकर ही आ रहे होंगे। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले विनोद राठौर की आवाजों में, बाजीगर फिल्म से।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। और कार्यक्रम में ये रहा कार्यक्रम का अंतिम गीत खलनायक फिल्म से

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। 12:30 अब वक्त है प्यारी बहनों के कार्यक्रम मिंजरा का, तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम मिंजरा।

मंच सजे है, मन सजे है, अज हर सखियां दे चेहरे पर मुस्कान है। अहां दी श्रोता सखियां दी प्यारी दी उपस्थिति करने अहां दे कार्यक्रम मिंजरां दी अपनी एक अलग शान है। जी हां सखियो, इन्हां खूबसूरत पंक्तियां करने ही शुरुआत कर दे अज दे कार्यक्रम सुनो सखी दी। अज दा कार्यक्रम हुंदा मिंजरां दा, तां सारियां श्रोता सखियां जो स्वागत है, अभिनंदन है सारियां श्रोता सखियां दा तुहाड़े अपने कार्यक्रम मिंजरां च। तां अज दे कार्यक्रम विच मैं तुहाड़े कन्ने तुहाडी अपनी रेडियो सखी माया, सारियां श्रोता सखियां जो साडी तरफी ते प्यार भरी राम राम। ठीक एक बजे तक इस कार्यक्रम दे माध्यम कने अहां तो कने जुड़े इनसे जुड़े रहना है, ते अद्धे घंटे च कुछ पल होने सीखने दे यानी जानकारी साझा करने दे, ते कुछ पल होने मनोरंजन दे यानी लोक गीत सुनने दे, ते कार्यक्रम दे अंत पर खाने पीने दी गल्ला भी ऐसा जरूर करनी है अपनी सखियां कन्ने, क्योंकि बरसात दा मौसम है ते कदी कदी कुछ चटपटा बनाना ते चटपटा खाना जड़ा सा खरा लगदा। तो इसका पहले कि अस अपने कार्यक्रम विच अगे बदन ते गल करन अज दे विषय दी, पहले चलदे हैं मनोरंजन पासे ते सुन लैंदे इक चटपटा दिया लोक गीत।

एक बारी फिर स्वागत असद श्रोता सखियां दा कार्यक्रम मिंजरां च। तो गल करनी पहले असां अज दे दिने दे बारे च। जी हाँ सिखियो, अज 27 अगस्त है। तो 27 अगस्त यानी अज दे दिने जो असां मनांदे हन विश्व झील दिवस दे रूप च। जी हाँ सिखियो, जितनी भी झीलां हन इस धरती पर सारी प्रकृति दी अनमोल देन हन। ये सिर्फ जल दा स्रोत ही नहीं हैं बल्कि पर्यावरण, जैव विविधता ते आम मनुआ दे जीने दी जरूरी आधार हैं। झीलां च कई तरह के जलीय पौधे, मछलियाँ, पक्षी ते दूजे होर जीव जंतु अपना जड़ा से जीण बिताते। इस खातिर अजे दे दिने झीलां दे महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने ते उन्हां दे संरक्षण का संदेश देने वास्ते अज का दिन जड़ा से विश्व झील दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस धरती पर उपलब्ध मिठे पानी की झीलां जिहड़ियां हैं से महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन्हां दा पानी पीने वास्ते खेतीबाड़ी, पशु पालन ते दूजे कई जरूरी कामों वास्ते जड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है। झीलां बरखा के पानी जो कठोने च मदद करती हैं ते झीलां दे अखे पखे दा वातावरण जड़ा सा भी सुंदर ते शांत हुंदा। इस खातिर लोग झीलां जो दिखने वास्ते दिखा दूरा दूरा का आउंदे हैं, यानी झील जिहड़ी हैं आहां दी सैर पर्यटन जो भी बढ़ावा दिंदी हैं, जैव विविधता जो भी बनाए रखने च अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभांदी हैं। झीलां पर्यावरण दे संतुलन जो बनाए रखने च मदद करती हैं, कई जीवों वास्ते अनुकूल वातावरण जड़ा सा प्रदान करती हैं। पर अज कितनी झीलां प्रदूषण, प्लास्टिक दे कचरे, गंदे पानी ते असा मनुआ दी वजह कन्ने प्रभावित जड़ी सो हुआ करती हैं। झीलां दे पानी च अगर असा कूड़ा कचरा पांदे हैं मन्नी लिया, तो झीलां दा पानी जड़ा ते इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती। जलीय पौद्या जो जीव जंतुआं जो नुकसान हुंदा इस कन्ने, ते कई जगह झीलां दे अखे बखे अगर कोई काम हुआ करता है या पेड़ा दी कटाई हुआ करती है, तो इस कन्ने भी क्या होंदा कि झीलां जो खतरा होंदा, यानी उन्हां दा प्राकृतिक स्वरूप जड़ा से खराब हो जाता। इस खातर झीलां जो बचाने वास्ते झीलां दे अखे बखे कूड़ा जड़ा से बिल्कुल नहीं सटना चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कने झीलां दे अखे बखे प्लास्टिक जड़ा से बिल्कुल नहीं सटना चाहिए, तो गंदे पानी जो सही किते बिना झीलां च बिल्कुल नहीं पाना चाहिए, यानी गंदा पानी झीलां च सटने का असा सबना जो जड़ा से बचना चाहिए। स्थानीय लोग जो जड़े पर्यटक हैं उन्हें जो झीला की सुंदरता जो दिखने वास्ते जड़े से आते हैं पर्यटक, उन्हें सारे जो झीला की स्वच्छता के प्रति जड़ा से जागरूक करना जरूरी है। यानी जड़े स्थानीय लोग हैं उतु के कने जड़े भी पर्यटक आते, उन्हें सबना जो सफाई रखने जो बोलना चाहिए झीलों के अखे बखे। अज के दिन झीलों के संरक्षण वास्ते सिखियो विद्यालय च, महाविद्यालय च, स्कूलों च कई जागरूकता कार्यक्रमों का जड़ा से आयोजन भी किया जाता है। तो सिखियो झीलों असदी प्राकृतिक जड़ी हैं से धरोहर हैं। इन्हों की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि असा सारे मनुआ का कर्तव्य है। अगर अज असा झीलों जो स्वस्थ ते सुरक्षित रखते, तो आने वाली पीढ़ियां जो भी स्वच्छ पानी ते सुंदर प्राकृतिक वातावरण जड़ा सा मिली सकता है। विश्व झील दिवस पर अपनी सखियां कन्ने बस असा इतना ही बोलना चाहते कि झीलां बचानी, जल बचाना, प्रकृति दा संतुलन बनाना, स्वच्छ झील ते स्वच्छ धरा, यही है असा दे जीने दा।

सच्चा सहारा। तो अगे कार्यक्रम विच भी अहां दा जिहड़ा सहारा है सै लोक गीत, जियां सकियो अपने अपने रेडियो सैट्स पर सुना ये प्यारा दिया लोक गीत।

0: शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: एक बारी फिर स्वागत है सदिया श्रोता सखियों का कार्यक्रम मिंजरां च। सखियो अज के जमाने च रोजगार पाना जड़ा से हर कुसी की बड़ी बड़ी जरूरत है। बढ़ती जनसंख्या ते घटती सरकारी ते निजी नौकरियों की वजह करने हर इंसान जो नौकरी मिलना जड़ा से आसान गल नहीं है अजकल के जमाने च। ते इदे वक्त च स्वरोजगार ही एक खरा जड़ा से साधन है। स्वरोजगार यानी कुसी दूजे दे अधीन काम जड़ा से नहीं करना, बल्कि अपने हुनर, मेहनत ते संसाधना दा उपयोग करके अपना कोई भी काम जड़ा से शुरू करना। इस वास्ते कुसी बड़े शहर पर जाना या ज़्यादा पैसा लगाने दी भी जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा दे अपने घरे या अखे बखे अपने ग्राएं च स्वरोजगार दे कई अवसर जड़े इनसे अज मौजूद हैं। करे का जालू ऐसा कोई भी कम कर दे तो इस ते जड़े इनसे देखा कई फायदे हैं। सखियो ऐसा अपने घरे भी खरे कन्ने जड़े ऐसे देखा ते सुहा संभाली सकते, न्याणे की देखभाल जड़ी है सै भी घरे कन्ने करी सकते अगर घरे का कम करते हैं तो घरे का ही चार पैसे जड़े इनसे कमाई सकते। ऐसा अपने घरे का ही छोटे छोटे व्यवसाय जड़े इनसे शुरू करी सकते, जिया कि दूध दही का व्यवसाय करी सकते, मधुमक्खी पालन करी सकते, है ना, इसका काम करी सकते, मुर्गी पालन का काम करी सकते, मशरूम उत्पादन का काम करी सकते, सब्जियां की खेती, फुलों की खेती, कितने सारे काम हैं जिन्हें जो असा व्यवसाय के रूप में जड़ा सा शुरू करी सकते। इसके अलावा असा औरतां घरे का ही सिलाई बुनाई कढ़ाई करने का काम करी सकदियां, अचार बनाई करी बेची सकदियां, पापड़ बनाने का काम करी सकदियां, मुरब्बे चटनी मिठाइयां ते होर भी कई चीज़ा जड़ी इनसे खाने वाली तिना जो बनाई करी असा तिना दा काम करी सकदियां, व्यवसाय के रूप में इसको अपनाई सकदी, इन्हां कम्मां दी जड़ी असा घरे का शुरुआत करी सकदियां। हस्तशिल्प ते स्थानीय पारंपरिक चीज़ा जो बनाई करी अपनी आय दा साधन जड़ा से असा आसानी कने अज बनाई सकदी आ। इस कन्ने असा जो अपना घर जड़ा से भी छड्डी करी बाहर भी नहीं जाना पौना ते घरे ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने च जड़ी से असा जो मदद मिल जानी, तो अहां दे परिवार दी आर्थिक स्थिति जड़ी है सै भी मजबूत हो जानी। ते अज दे डिजिटल युग च घरे भी करी काम करना होर भी आसान हो गया है। जिन्हां मतलब असा दियां पैणा जो डिजाइनिंग लेखन डिजिटल सेवाएं ते होर भी जिन्हां दर ये चीज़ां योग्य हैं, इन्हां चीज़ां च से कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट दा इन्हां च ज्ञान है तो से ऑनलाइन पढ़ाई भी करी सकदी हाँ और ऑनलाइन इन्हां चीज़ां जो सीखी भी सकदी है ते अगे सिखाई भी सकदी है। इन्हां जो जड़ा से व्यवसाय दे रूप च मतलब अगे काम करी के प्रशिक्षण दे सकदी हाँ और अपने चार पैसे जड़े इनसे घरे बेकरी कमाई सकदी हाँ। अज घरे बेकरी कितनी आह दियाँ पैणा इन जड़ी से दूध दही घी अचार पापड़ होर भी चीज़ा बनाई करी जड़ी ऐसे ऑनलाइन बेची करी चार पैसे कमा दिए हैं। अपना व्यवसाय जड़ा से कई औरतों ने कई महिलाएं ने जड़ा से शुरू किया है घरे बेकरी और इदियाँ पैणा जड़ी इनसे अह वास्ते प्रेरणा का स्रोत है ना, इन्होंने कम्मा जो सीखी।

रिजिड ऐसे अपना काम कर सकते। बस कोई भी काम करना हो, कोई भी व्यवसाय शुरू करना हो तो पहले अपनी रुचि योग्यता ते अपने हुनर दा असा सबना जो जड़ा से पता होना चाहिए। अगर कोई कमी लगती अपने आपे च तो प्रशिक्षण भी ले सकते, यानी किसी भी काम की शुरुआत करने का पहले उसको खरे करने जड़ा से सीखना जरूरी है। पहले छोटी शुरुआत करके उस काम जो अगर मनी लिया से ठीक चले तो होर जड़ा से तुसो बधाई सकते, बड़े स्तर पर हाँ काम जड़ा से करी सकते। इस कने ऐसा महिलाएं दी आत्मनिर्भरता ते आत्मविश्वास जड़ा से ऐसा दा बधदा। जलू ऐसा अपने हुनर दे और अपनी कला दे हिसाबे कने कमाई कर दे ता ऐसा दे अंदर जड़ा से दिखा निर्णय लेने दी क्षमता जड़ी है सै भी बधदी है ना, कने जिम्मेदारी दी भावना जड़ी है सै भी बधदी। तो सखियो स्वरोजगार दी तलाश च हमेशा घर ते ग्रां जो छड्डी करी बाहर जाने दी जरूरत नहीं है। असा दे घरे ही कई जड़े ऐसा अपने काम करी सकते हैं, कई संभावनाएं जड़ी ऐसे असा दे घरे ही छुपियो हैं। जरूरत है उन्हें जो पहचानने दी, सही योजना बनाने ते मेहनत करने अगे बढ़ने दी। ता अपना हुनर पहचानना, घर का शुरुआत करनी, मेहनत जो अपना जड़ा से साथी बनाना ते आत्मनिर्भरता पासे अपना जड़ा से कदम बढ़ाना। तो दिखा जालू असा इन्हें चीज़ा जो गरीबी करी करते हैं।

इसी लोक गीत कन्ने अज दे कार्यक्रम विच बस इतना ही। कार्यक्रम जो तुसा सखियां तक पुजाने वास्ते तकनीकी सहयोग दित्या विकास पठानिया ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अपनी सखी माया जो कार्यक्रम जो संपन्न करने की अनुमति दे प्यारी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। एक बजने को है अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार अरेले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारी

0: मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 9 टीम और उत्तर प्रदेश में एक टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में NDRF की एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की। ओसाका में ROHM के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 127 रन की बढ़त बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 77,309 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. He said that sports is not limited merely to winning medals.
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia said, under the leadership of Prime Minister Modi, sports country's sporting ambitions while ensuring that their ideas and perspectives become part of the continuing conversation on India's youth and sports ecosystem. The death toll from the flash flood that swept through parts of the Nepal-Tibet border has

दोस्तों, सुरीला सफ़र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिल्म में जो होती हैं उसमें डबल रोल ही नहीं, जीवन में भी दो मुंह वाले, दो चेहरे वाले लोग भी होते हैं, तो इस बारे में भी अपने विचार भेज दीजिए। आइए सुनते हैं अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है हम दोनों और इस गीत के संगीतकार का नाम बताइए और अभिनेता तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं वो भी बता दीजिए ज़रा।

मिला है कि आज आपका पहला सफर है, पर घबराए ना, हम सब आपके साथ हैं और थोड़ा बहुत कुछ है भी तो हम श्रोता भी समझते हैं कि आज आपका पहला दिन है।

एक श्रोता मित्र हमें लिखती हैं कि आज तो हमारे भाई के घर रक्षाबंधन मनाने जा रही हूँ, तो कार्यक्रम में शामिल होना थोड़ा मुश्किल है, मगर इबारत से लगता है कि आज तो बहुत सुरेले और दिलकश गीत सुनने को मिलेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

साथियों, सुरीला सफ़र का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार हैं नौशाद, फिल्म का नाम है राम और शाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो दो नायिकाएं थीं उनके नाम बता दीजिए, लिख भेजिए हमारे फेसबुक पेज पर।

हम दोनों इस फिल्म के गीत के संगीतकार थे जयदेव, और देवानंद सेना में ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, ऐसा भी जवाब हमें मिल गया। दोस्तों, आप हमें लगातार जवाब और मैसेज तो भेज रहे हैं और हमसे जुड़ते भी जा रहे हैं, तो अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि आज के कार्यक्रम में ली गई फिल्मों में एक बात कॉमन है, और वो क्या बात है ज़रा बता दीजिए। सीता और गीता इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का। और ऐसी ही एक और फिल्म थी जिसकी नायिका श्रीदेवी थी, तो उस फिल्म का नाम लिख दीजिए।

एक श्रोता ने लिखा है कि उस फिल्म का नाम जिसमें श्रीदेवी थी उसका नाम है चालबाज। सीता और गीता की रीमेक थी वो फिल्म। एक चेहरा मगर दो किरदार, एक शक है मगर दो अंदाज, एक रिश्ता मगर दो अलग अलग रंग। प्रोग्राम इस तरह का है। अच्छा,

यानी कि आज के कार्यक्रम में ली गई फिल्मों में जो बात कॉमन है वो क्या है वो तो आपने बता दी। तो आइए अब सुनते हैं ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है डॉन और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम क्या है, नाम क्या है वो बता दे हमें। और हमें आपसे ये भी पूछना है, एक गीत जो हमने आपको बताया वो आपने अभी तक हमें नहीं बताया कि नदी बहती है झरझर, हवा कहती है सरसर, बात फैली है घर घर घर, गोरिया गाए गुनगुन। ये गीत अभी तक आपने हमें नहीं बताया कि ये किस गीत का अंतरा है।

कार्यक्रम सुरीला सफ़र। एक साथी मित्र ने हमें लिखा है कि हम अभी राखी की तैयारी में लगे हैं और समय निकालकर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं क्योंकि कल नहीं सुन पाएंगे, कल हम बाहर जाने वाले हैं। और ये अगला संदेशा है कि जिस फिल्म में डबल रो

होता है वहाँ एक पात्र सीधा और दूसरा जरूरत से ज्यादा चालाक क्यों होता है? सोचने वाली बात है। एक साथी ने लिखा है कि अक्सर मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि कभी तुम भी तो कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया, तो मैं तो हमेशा इजहार करता ही हूँ। हाय रे किस्मत, शादी को इतने साल हो गए पर धर्मपत्नी सिर्फ शर्माती हुई दीवाना कह देती हैं मुझे और गुनगुना देती हैं कि बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते बुझते मैं तो हार गई रे। एक मैसेज शिकायत वाला भी मिला है पर प्यार भरा है। पटर पटर बोलती हो बहुत, ऐसा मेरे लिए लिखा है। दोस्तों, अगर आप ये समझ ही गए हैं कि आज के सुरीला सफ़र में हमने ऐसी फिल्मों के गीतों को चुना है जिसमें नायक और नायिकाएं डबल रोल में थे, तो इसके अलावा भी और कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें डबल ट्रिपल रोल किए गए थे, तो आपको याद हो तो उन फिल्मों के नाम लिखकर संदेश हमें भेज दीजिए।

साथियों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। सुन क्या रहे हैं आप, तो हमारे हम सफर हैं। ये एक जो मैसेज मिला है हमें, कमेंट्स मिला है कि नदियाँ बहती है झरझर, ये अंतरा है छुनमुन पायल या छुनमुन छुनमुन फिल्म विरासत के गीत का। और विजय अमित जी के अक्सर फिल्मों में उनका यही नाम होता था, और उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म जो थी डॉन, उन्होंने झांसी की नंदनी टॉकीज में देखी थी। एक श्रोता मित्र लिखते हैं कि मुझे फिल्म मौसम की याद आ रही है, जिसमें शर्मिला टैगोर जी ने डबल भूमिका निभाई थी और नायिका और उनकी बेटी के बेटे के रूप में संजीव कुमार अभिनेता थे। और धर्मेंद्र जी ने डबल रोल किया था यकीन इस फिल्म में। तो अब अगला गीत सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है चालबाज। और इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ जो दो हीरो थे उनके नाम हमें लिख भेजिए। श्रीदेवी के डबल रोल के नाम भी आप बता सकते हैं।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि चालबाज फिल्म में श्रीदेवी के साथ हीरो थे रजनीकांत और सनी देओल, और किसी ने अनिल कपूर भी लिखा है जो कि गलत है। और ये अगला कमेंट है कि मेरा साया में साधना का डबल रोल था और कहो ना प्यार है में ऋत्विक रोशन भी डबल रोल में थे। एक श्रोता लिखते हैं कि दो फूल और दिल तेरा दीवाना तथा हमजोली में महमूद, जिगरी दोस्त जैसे को तैसा तथा प्यासा सावन, जितेंद्र, किशोर कुमार बॉम्बे का चोर, अशोक कुमार मेरी सूरत तेरी आंखें और शाहरुख खान डॉन तथा पहेली में डबल रोल में थे। तो साथियों, अब जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें ये बता दीजिए कि काजोल के साथ में इस फिल्म में विलन कौन थे।

मंगेशकर और कुमार सानू गीतकार थे, आनंद बख्शी संगीतकार थे, उत्तम सिंह। फिल्म का नाम था दुश्मन। और एक श्रोता मित्र ने जवाब लिखकर भेजा है कि काजोल के साथ में दुश्मन फिल्म में जो विलन की भूमिका निभाई थी वो आशुतोष राणा थे। बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि जैसे को तैसा, जिगरी दोस्त, बैराग, संजीव कुमार की नौ रोल वाली फिल्म महान में अमिताभ बच्चन का ट्रिपल रोल था, आंटी नंबर वन, चाची 420 और अंगूर, इज्जत में धर्मेंद्र का डबल रोल, दो कलियां में नीतू सिंह, सावन भादव में नवीन निश्चल, कस्मे वादे में अमिताभ बच्चन और गजब में धर्मेंद्र। तो भाई आपके जो कमेंट्स थे उसमें तो हमें एक बहुत लंबी लिस्ट मिल गई कि डबल रोल वाली फिल्में कौन सी थीं।

डैनी का डबल रोल था फिल्म बुलंदी में, और डबल रोल प्यार के इजहार पर आज आपने सुरीला सफ़र में शानदार कार्यक्रम पेश किया, ऐसा एक मैसेज भी हमें हमारे श्रोता से मिला है। एक कार्यक्रम में एक मैसेज और पढ़ लेते हैं कि ये जीवन ठहरने का नाम नहीं, चलने का नाम है, और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी चलती है, इससे सुंदर क्या हो सकता है। हम इस संसार में अपने आप अपने अपने हिस्से की यात्रा लेकर आते हैं, बादल आसमां और कलकल करती बहती नदी यादों का समंदर लेकर आती है। आज सुरीले सफ़र कार्यक्रम में जो गीतों की नदियां आपने बहाई, हमें वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। कल भी हम इस कार्यक्रम को सुनेंगे, और आज की प्यारी उद्घोषिका के साथ हमने कार्यक्रम सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। तो एक श्रोता मित्र ने हमें ये मैसेज भेजा।

साथियों, सुरीला सफ़र के हम सफ़र बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: मुलाकात पर। मुलाकात केवल दो लोगों का मेलजोल नहीं होता, ये भावनाओं, यादों और अपनापन का एक सुंदर संगम होता है। कभी कभी वर्षों बाद किसी अपने से हुई छोटी सी मुलाकात भी मन में ऐसी खुशियां भर देती है जैसे सूखे हुए आंगन में अचानक फूल खिल उठे हो। हर मुलाकात अपने साथ कुछ पल लेकर आती है, कुछ मुस्कानें, कुछ बातें और कुछ यादें। कुछ मुलाकातें जीवन में एक नया अध्याय जोड़ देती हैं तो कुछ मुलाकातें बीते हुए पलों को फिर से जीवंत कर देती हैं। अपनों से मिलने का आनंद शब्दों में नहीं बल्कि आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान में दिखाई देता है। मुलाकातों का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब रिश्तों में दूरी आ जाती है। एक सच्ची मुलाकात कई शिकायतों को मिटा सकती है और दिलों के बीच की दूरियों को कम कर सकती है। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती है।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर संदेशों और साधनों से जुड़े रहते हैं, लेकिन आमने सामने की मुलाकात का एक एहसास ही अलग होता है। किसी अपने की आवाज़, मुस्कान और साथ बैठकर बिताए हुए पल रिश्तों को और भी गहरा बना देते हैं। मुलाकात वो खूबसूरत पल है जहाँ समय कुछ देर के लिए ठहर जाता है, यादें मुस्कुरा उठती हैं और दिल कहता है कुछ रिश्ते दूर रहकर भी पास रहते हैं। ये एक ऐसा क्षण होता है जो कभी कभी बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी यादें जीवन भर हमारे साथ चलती हैं। किसी अपने से मिलना मन को वैसी ही शांति देता है जैसा लंबे समय बाद थकी हुई आत्मा को सुकून की छांव मिल जाए। मुलाकात का अर्थ केवल सामने बैठकर बातचीत करना नहीं, इसमें अपनापन होता है, भावनाओं की गर्माहट होती है और एक दूसरे की खुशियों और परेशानियों को समझने का अवसर होता है। कई बार वर्षों बाद हुई

मुलाकात पुराने रिश्ते में नई जान डाल देती है। बचपन के मित्र, बिछड़े हुए रिश्तेदार या पुराने परिचित जब मिलते हैं तो बीते हुए दिनों की यादें फिर से आंखों के सामने जीवंत हो जाती हैं।

कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं और जीवन में विशेष स्थान बना लेती है। राह चलते किसी पुराने साथी से मिल जाना, किसी प्रियजन का अचानक घर आ जाना या किसी लंबे इंतजार के बाद अपने से मिलना, ये पल मन में खुशी की नई रोशनी जगा देते हैं। ऐसी मुलाकातें हमें एहसास कराती है कि रिश्तों की असली खूबसूरती समय और दूरी से कम नहीं होती। आज के आधुनिक समय में हम दूर बैठे लोगों से तुरंत बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, लेकिन आमने सामने की मुलाकात का महत्व अलग ही है। किसी की आँखों में खुशी देखना, चेहरे के मुस्कान महसूस करना और साथ बैठकर कुछ पल बिताना रिश्तों को और मजबूत बनाता है। शब्दों से अधिक कभी कभी एक मुलाकात बहुत कुछ कह जाती है। मुलाकातें हमें सिखाती है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय देना आवश्यक है। जैसे पौधे को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को भी प्रेम और साथ की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी मुलाकात भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी का कारण बन सकती है। कुछ मुलाकातें जीवन बदल देती हैं। ऐसी मुलाकातें हमारे विचारों और रास्तों को नई दिशा दे सकती हैं। मुलाकातें जीवन की किताब के वे सुंदर पन्ने हैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
0: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहाले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +977-985-131-6807 और +977-970-91-07500। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल्कि महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में NDRF की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल्कि एक टीम तैनात की गई है।
5: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो CWC का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है,

0: गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत है मुकेश की आवाज में, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है अनाड़ी।

होली आई रे। इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना है दान सिंह के, फिल्म का नाम है माई लव।

आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तीसरा कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीतकार थे रोशन, फिल्म का नाम था दिल ही तो है।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है आशिक।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मुकेश और वैजयंती माला की आवाजों में। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है संगम।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बजे हैं, अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार अरले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के निर्माण में देश की खेल प्रतिभा और युवा शक्ति को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में विश्व के खेल मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है।

0: और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है।
1: प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारत में खेल एक बेहतर करियर और पेशे के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि खेल केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता बल्कि बेहतर प्रतियोगी बनना भी सिखाता है।
0: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से सुना गया। सिरमौर जिला के कालाअंब में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का काम करेगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने खेलों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: पिछले 12 वर्षों में हमारे देश के युवाओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपना योगदान दिया, चाहे ओलंपिक्स गेम है, चाहे पैरालंपिक्स है या दूसरे गेम्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं से आह्वान किया कि हम सबको अपना अधिक से अधिक समय खेलों में हिस्सा लेने में व्यतीत करते हुए नशे से मुक्त भी हमारा युवा रहे। विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसमें भी इस देश का युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से आह्वान किया।
1: वहीं कांगड़ा में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं व खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा, अनुभव और विचार साझा करने के लिए बेहतर मंच प्रदान कर रहा है। उधर चंबा राजकीय महाविद्यालय और बनीखेत में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से सुना गया। प्रदेश में रक्षाबंधन के पर्व पर कल 28 अगस्त को सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में ये घोषणा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम व स्नेह का पर्व है, ऐसे में इस अवसर पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अवकाश का निर्णय लिया गया है ताकि सभी लोग इस त्यौहार को साथ मिलकर मना सकें। इसके अलावा रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में एलपीजी आपूर्ति की समस्या का एक सप्ताह के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के संबंधित विभागों व जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज कोटखाई में एलपीजी की सुचारू व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। रोहित ठाकुर ने कहा कि सेब सीजन के दौरान लोगों को रसोई गैस की कमी के कारण कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रक्षाबंधन पर्व को लेकर सोलन जिला में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिठाइयों की दुकानों, होटलों व रेस्तरां में मिठाइयों व अन्य सामान के सैंपल की जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अतुल कैस्थला ने बताया कि विभाग रक्षाबंधन पर्व पर लोगों की सेहत के लिए सतर्क है, इसी के दृष्टिगत मिठाइयों की दुकानों सहित होटलों व रेस्तरां में निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है। यूपी

0: आई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
1: आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सिरमौर जिले की चिट्ठी। लेखक हैं सतीश शर्मा, वाचिका प्रभा शर्मा।
2: भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान खेलों के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि ओलंपिक सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बात उन्होंने खेलो युवा संवाद कार्यक्रम के तहत मीडिया से बात करते हुए कही। सांसद ने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और खेल गतिविधियां युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रखने में भी मददगार साबित होंगी। सांसद ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सिरमौर जिले में धान खरीद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने धान खरीद के लिए धौलाकुआं और पांवटा साहिब को खरीद केंद्र के रूप में चयनित किया है। इन केंद्रों पर 3 अक्टूबर 2026 से धान की खरीद शुरू होगी। सरकार द्वारा ए ग्रेड धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले निर्धारित दर से 72 रुपये अधिक है। धान बेचने के इच्छुक किसान 15 सितंबर से पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने किसानों से सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने और अपनी फसल चयनित खरीद केंद्रों पर ही उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। सिरमौर की लोक संस्कृति विरासत के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार डॉ. जोगेंद्र हाब्बी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उन्हें लोक नृत्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन सांस्कृतिक साधना के लिए ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का आयोजन सराहा में किया गया। मेले में श्री वामन भगवान की भव्य शोभा यात्रा, खेल प्रतियोगिताएं, दंगल और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड का दौरा कर वापिस लौटा है। राज्य जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश में जल प्रबंधन को लेकर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड में जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक जल स्रोतों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सिरमौर में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आई है। जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक आयोजित राजस्व लोक अदालतों में जिले में कुल 6107 नामांकन, 22 बंटवारा और 102 सीमांकन मामलों का निपटारा किया गया। तहसील व उप तहसील स्तर पर पांवटा साहिब में सबसे अधिक 1656 नामांतरण मामलों का निपटारा हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे सिरमौर जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रले के
4: बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधुताई सबकाल की। तो देश ने हमारे समय समय पर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है आरती, जिन्होंने अपने संघर्ष और सेवा के से समाज को नई दिशा दी है ना। ऐसी एक महिला जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नाम है उनका सिंधुताई सपकाल, जिन्हें प्यार और सम्मान से अनाथों की माई भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, ममता, साहस और मानवता की अद्भुत कहानी है।
5: बिल्कुल, और हम उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में, और उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता था। आर्थिक अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी, लेकिन परिस्थितियों ने उनके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को कभी भी समाप्त नहीं होने दिया। जीवन

0: उन्हें कम उम्र में ही विवाह और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है उसके बंधन में उनको बांध दिया था
1: जी। और ये जो उनका वैवाहिक जीवन था ना वो भी कोई सुगत नहीं था। कठिन परिस्थितियों और पारिवारिक संघर्षों के बीच जब वो गर्भवती हुई तब अत्यंत पीड़ा और अकेलेपन का वो सामना कर रही थी। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया लेकिन इसके बाद उनके जीवन की कठिनाइयां और बढ़ गई थी। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय उनके पास न तो कोई रहने का ठिकाना था आरती, और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन हुआ करता था, और न ही ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर वो भरोसा कर सके।
0: बिल्कुल। और अब खुद ही कल्पना करके देख सकते हैं कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जीवन की कठिन राह पर अकेली निकल पड़े। कभी रेलवे स्टेशन पर उनका आसरा बना तो कभी मंदिर या किसी पेड़ की छांव पर। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आई, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया था।
1: जी हाँ, और यही संघर्ष आगे बढ़कर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। जब उन्होंने अपने जैसे बेसहारा और ऐसे बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें देखा तो उनके भीतर भी कि जो माँ की ममता होती है वो जाग उठी। उन्होंने सोचा कि जिस तरह उन्हें अपने जीवन में अकेलेपन और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, वैसे किसी बच्चों को इस तरह का सामना न करना पड़े। तो उन्होंने कभी उन्हें ऐसा लगा कि कभी उन्हें अकेला छोड़ा जाना नहीं चाहिए। उन्होंने बेसहारा बच्चों को अपनाना शुरू किया और वे उनके लिए केवल आश्रय नहीं बनी बल्कि माँ बन गई।
0: बिल्कुल। और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। सिंधुताई ने अपने जीवन को उन बच्चों के नाम कर दिया जिन्हें समाज ने सहारे के बिना छोड़ दिया था। वो बच्चों को भोजन देती, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए हर बच्चा उनका अपना बच्चा था।
1: और ये जो सफ़र था आरती, ये आसान नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने धन अर्जन किया, उसमें से कुछ उन्होंने बचाया, और फिर आगे चल के और कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे भी उन्होंने मांगा कि मदद मांगी कि भाई मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ तो मुझे ज़रूरत है धन की और अलग अलग सुविधाओं की। तो सब लोगों ने आगे बढ़ के उनका ये उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया।
0: बिल्कुल।
1: और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि माँ होना केवल जन्म से नहीं बल्कि ममता और जिम्मेदारी निभाने से भी होता है।
0: बिल्कुल। और सिंधुताई सपकाल ने हजारों अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों को माँ का प्यार दिया। वो बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। उनके आश्रम में पले बड़े अनेक बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षक बने, और कुछ ने स्वयं समाज सेवा का रास्ता चुना, जैसे कि उनके साथ में अच्छा हुआ था, वैसे उन्होंने भी सोचा वो भी किसी के साथ में अच्छा करें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने सेवा को कभी दया का विषय नहीं बनाया। वे बच्चों को कमज़ोर समझकर उन पर उपकार नहीं करती थी बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। और हमेशा उन्होंने कहा कि जीवन जीने का एक अवसर आप अपने लिए ढूंढिए।
0: बिल्कुल। उनके कार्यों को देश में विदेश में सम्मान मिला। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें पद्मश्री भी शामिल है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों का प्यार था जो उन्हें माई कहकर पुकारते थे।
1: जी। और सिंधुताई सपकाल ने 4 जनवरी 2022 को इस संसार से सदा के लिए विदा ले ली। लेकिन उनकी ममता और सेवा की कहानी आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में साहस और दूसरे के लिए संवेदना हो तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: बिल्कुल। और उन्होंने लाकर दिखाया वो परिवर्तन।
1: लाकर दिखाया। और देखिए, ये तो हम आज सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, लेकिन जब असल में हुआ होगा तो कितना कठिन रहा होगा वो सारी परिस्थितियों को सामना करना। बच्चे इतने सारे हैं, खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं है, या कभी कभी हर रोज का दिन चलाने के लिए उतना धन नहीं है, तो बहुत कठिन होता है जब ऐसे दिन आते हैं। लेकिन माँ की शक्ति कुछ एक अनोखी और अलग ही होती है ना, वो अद्भुत होती है, कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर ही जाती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
0: एक गीत सुने।

0: भाई ऐसा तो होता है, कोई एक व्यक्ति जीवन में ना जिसको देख के मन का संयम टूट जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कोई सखी भी हो सकती है।
1: हाँ और क्या, ऐसे तो
0: पता है आरती एक हल्की सी शर्मिली से मुस्कान दे रही है सारे।
1: जैसे कि दीपा जी को देखकर।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल। और हम अपने जो

0: श्रोता हैं उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इन्होंने एक हमारे श्रोता है वो जो लिखते हैं कि सिंधु ताई सपकाल को अनाथों की माँ कहा जाता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हजारों अनाथ बच्चों के पालन पोषण और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
1: जी, और एक और ये संदेश आया है, ये इन्होंने कहा कि पद्मश्री प्राप्त सिंधुताई सपकाल को मैंने पूरा कार्य मैंने उनका सुना तो है, ये देखा भी है। वो बहुत ही मधुर वाणी की महिला और अनाथों के प्रति उनका जो दिल में वात्सल्य भाव था उनका, वो देखते ही बनता था। उनकी बेटी ममता सपकाल मेरी छात्रा रह चुकी हैं, जो अब उनकी माँ का काम आगे बढ़ा रही हैं। और
0: बिल्कुल
1: एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि सिंधुताई ने खुद का दर्द भुलाकर उन लावारिस बच्चों को अपना उन ज़रूरतमंद बच्चों को अपना बना लिया, और उनके लिए अलग अलग जगह से कभी पेट भरने के लिए जुगाड़ उन्हें लगानी पड़ती थी, कभी कहीं से मांगना पड़ता था, तो कभी उनको एक चीज़ बोलना पड़ती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका भविष्य संवारा। उनके द्वारा संचालित संस्था और अनाथालय में बच्चों को शिक्षा, आश्रय और संस्कार दिए जाते। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल। एक और संदेश है हमारा, तो हमारी श्रोता जो कहती हैं कि आज सिंधु आई को आपने याद किया, इसलिए वो धन्यवाद कह रही हैं। और सिंधु आई हमारे वर्धा ज़िले के पिंपरी मेघी गांव में जन्मी थी और वो अनचाही संतान थी, इसलिए उनका नाम चिंधी रखा था। चिंधी मतलब बिना काम का बारीक सा टूटा हुआ टुकड़ा। आई ने, यानी अगर आपको आई का मतलब नहीं पता, वैसे तो हमें पता है आई का मतलब, और वो पति ने भी उनको निकाल दिया था तो जब वो गर्भवती थी, और आई ने अपनी अपनी जच्ची खुद अपने हाथों से की थी, और उस बच्ची का नाम ममता रखा था, जो आज उनकी संस्था जो अनाथ बच्चों के लिए आई ने खोली थी उसे संभालती है। आई ने बहुत संघर्ष किया जीवन में, और जीवन के आखिरी वक्त उन्होंने अपने पति को भी अपने बच्चे की तरह संभाला था। आई महान थी।
1: बिल्कुल सही कहा, और हम उन्हें नमन करते हैं। और उनके जैसा एक हर महिला अपने अंदर एक हिम्मत और की शक्ति बना के रखे,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि इस तरह से जो उतार चढ़ाव आते हैं अपने जीवन में, हर एक के जीवन में आते हैं, कहीं किसी को किस रूप में, कहीं किसी को किस रूप में, तो उनका जीवन तो हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, डटकर उसका
0: बिल्कुल,
1: सामना
0: हार
1: करें।
0: नहीं मानना चाहिए बस
1: जी
0: कभी।
1: बिल्कुल,
0: एक गीत सुन लें।
1: चलो एक गीत सुन लेते हैं।

0: बड़ा ही सुंदर प्यारा सा गीत है ये वाला, है ना। और अच्छा, आगे की बात बताने से पहले साथियों एक सवाल, सवाल ये कि क्या आप कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम बता सकते हैं, और पर्यटन के लिए आप कहाँ कहाँ कहीं पे घूमने गए थे, कोई प्रसिद्ध हमारे देश की झील। वैसे कुछ संदेश आए हैं जो विदेश में भी प्रसिद्ध झीलों के आसपास घूम कर आए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अब हम बताते हैं कि आज है वर्ल्ड लेक डे, यानी कि विश्व झील दिवस।
1: और विश्व झील दिवस का उद्देश्य क्या है? तो दीपा, इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर की झीलों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और झीलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार, साथ ही लगातार प्रबंधन के लिए उनका प्रबंधन चलता रहे, होता रहे, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको लोगों को प्रोत्साहित करना।
0: जी, तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण और लगातार विकास के महत्व पर चर्चा की और विश्व झील दिवस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई चर्चाओं में जोर दिया, और फिर बहुत सारे डिस्कशंस हुए। उसके बाद 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में इसे नामित किया गया।
1: बिल्कुल, ये दिवस झीलों की कई भूमिकाओं को मान्यता देता है, जिनमें मनोरंजन और आर्थिक उपयोग से लेकर जलवायु विनियमन तक शामिल हैं, और साथ ही हमारे लिए ताजे पानी का स्रोत भी है।
0: और जो पेयजल की आपूर्ति करती है ये ताजे पानी का स्रोत, और कृषि और कई तरह के जो उद्योग है उसको सहारा देती हैं। फिर जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने में भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। मछलियों के लिए, वन्य जीवन की बात करें अगर हम, पौधों के लिए आवास प्रदान करती हैं। झीलें बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और कार्बन का भंडारण भी करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कई सारी गतिविधियों के लिए भी और मानवीय गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है झील। लाखों लोगों की आजीविका झीलों पर निर्भर है, जैसे मछली पकड़ना, कृषि है उस पर, या पर्यटन से संबंधित जो भी काम होते हैं। झील अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित कर सकती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है झीलों की वजह से। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि झीलें लगातार खतरा बढ़ा झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो किस प्रकार का है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण, पानी का अत्यधिक उपयोग, या फिर ठोस अपशिष्ट होते हैं ना जो हम ऐसे डाल देते हैं, थैले वगैरह कचरा उठा के उसमें डाल दिया जाता है, या बढ़ता हुआ तापमान है, या वर्षा के बदलते पैटर्न्स जो आजकल होने लग गए हैं, उसकी वजह से जो झील का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर हमेशा मतलब एक सतत दबाव पड़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल, और इसी को लेकर हमारे, जब ये आपने एक प्रश्न पूछा था दीपा कि आप कहाँ गए हैं घूमने, तो एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने एक लिखा है, संदेश लिखा है, तो वो कहते हैं कि मैं अभी हाल ही में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट घूमने गई थी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में कई खूबसूरत झीलें हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाम टीटीसी और श्लस्चुसी है। टीटीसी वो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है, जो अपने सुंदर नज़ारों और बोट राइड के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने भी बोट राइड करके वहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठाया, यानी अच्छे तरीके से उन्होंने झील में अच्छे से घूमा है।
0: बिल्कुल, और जो झील के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी देखने में आया है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो हमने अभी बात कर ही रहे थे। और ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि झीलों के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, उनके संरक्षण के लिए एक मिलजुल के कार्रवाई हो, जो कि उसका सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, ताकि एक अवसर मिल सके कि हम झील के बारे में जहाँ चर्चाएं हो, जहाँ पर ये उससे जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं या जो सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, झील का बनावट वैसी ही बने रहे, उसका इकोसिस्टम वैसा ही बना रहे, तो इस पर एक अवसर प्रदान हो सके सभी के लिए।
1: बिल्कुल, और इसी को लेकर एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि हर वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने झीलों के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना था। और जो स्रोत हैं, झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध सतह के ताजे पानी का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं,

0: ये बाढ़ के पानी को सोखने और कार्बन को संग्रहित करने में मदद करती हैं। ये जलीय जीवों, पौधों और वन्य जीवों को आश्रय देती हैं।
1: जी, और झीलें वैसे देखा जाए तो दो भागों में भी बंटती हैं। एक होते हैं मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो झील हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो लेक सुपीरियर है, और ये जो है ये लेक सुपीरियर है, ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कहते हैं। और रूस की भी एक मीठे गहरे झील की है जगह, लेक टिटिकाका। फिर उसके अलावा हमारे देश की झीलें हैं,
0: बिल्कुल, जैसे कि डल झील है जम्मू कश्मीर में, बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और पेंगोंग त्सो लद्दाख में है जो, और त्सो मोरिरी लद्दाख में ही है ये भी, और लोकटक झील मणिपुर में, और चिलिका झील उड़ीसा में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। बहुत बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं।
1: देखिए, बात बात में हम एक अंतराल लेना तो भूल ही गए, तो चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम है सखी सहेली। तो झील के बारे में बातें हो रही थी, एक संदेश आया है आरती, ये कहते हैं कि हमारे शहर अजमेर में पौराणिक और ऐतिहासिक अन्ना सागर लेक है, जो कि मुगल काल के ज़माने का बना हुआ है, दौलत बाग और बारादरी के किनारे में स्थित है, और शाम के समय में क्वींस नेकलेस की तरह नज़ारा दिखता है, जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव के जैसा नज़ारा, जो मुंबई का प्रसिद्ध है ना क्वींस नेकलेस, जब आप मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये नज़ारा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके का नज़ारा आप अजमेर के इस झील अन्ना सागर लेक में भी देख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बताया जाना चाहिए देखने के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक और जगह हमारे लिस्ट में जुड़ गई ना कि यहाँ पे भी हमें जाना है।
1: बिल्कुल, और हम बात करने जा रहे हैं
0: कि भाई जब बढ़ती उम्र होती जाती है, तो जब असल में जब उम्र छोटी रहती है तो हमें लगता है सब कुछ तो हो जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, तब कहीं एहसास होता है कि इतना जल्दी जल्दी ये परिवेश बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन से जीवन बदल रहा है, बच्चे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी दूसरे देश में, और फिर जो माता पिता हैं वो वहीं पीछे रह जाते हैं उस शहर में जहाँ उन्होंने ताउम्र काम किया हो या उनका मूल शहर या गांव वहीं हो।
1: बिल्कुल,
0: अब हो ये जाता है आरती कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते और माँ बाप नए शहर नए परिवेश में अपने आप को ढालने में थोड़ा उन्हें दिक्कत आती है। वो कहते हैं भाई हम जहाँ हैं जिधर हैं हम तो वहीं ठीक है, तुम हमसे आ करके मिल जाया करो।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी उम्र जहाँ हमने बिताई होती है ना, तो हम वहाँ से जाके दूसरी जगह जाना फिर वहाँ पे एडजस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना।
0: बिल्कुल,
1: जब हमने सारा समय अपनी सारी जिंदगी उस जगह पे एक जगह पे बिताई है, तो इसके बारे में तो हम आगे बात करते रहेंगे। गीत सुन लें।
0: चलिए सुनते हैं।

0: बहुत ही सुंदर गीत था ना,
1: बहुत प्यारा। और ये जो बात होती है ना कि क्या किया जाए, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, ऐसे में लगता है कि रुक कर सोच लिया जाए कि जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो कैसा होगा जीवन और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उम्र भी कोई अचानक से तो आरती ऐसा नहीं है कि बढ़ती चली जाती है, तो धीरे धीरे चलकर आती है। तो अपने सुरक्षित भविष्य की योजना तभी से हमें बना लेनी चाहिए जब एक व्यक्ति एक्टिव या उसका जो है ना सक्रिय लाइफ हो, तभी वो सोच ले तो बेहतर है।
0: बिल्कुल। और बच्चों का सानिध्य मिले तो जीवन और भी खुशनुमा हो जाता है, लेकिन अगर वो दूर भी हैं तो भी अपना जीवन सम्मान, सुरक्षा और अपनी शर्तों पर जिया जाना चाहिए। और ज़िंदगी की दूसरी पारी का ये समय किसी का इंतज़ार करने का नहीं होता, बल्कि खुद के लिए जीने की सुदृढ़ तैयारी करने का होता है।
1: तो भाई क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम? जैसे कि हम स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का एक नियमित या सुनिश्चित जरिया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उम्र बढ़ने के साथ देखो ना दवाइयों का, फिर स्वास्थ्य संबंधी या देखभाल करने की अचानक ज़रूरत, ये बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने कामकाजी जीवन के दौरान ही निवेश के पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। पेंशन योजना है या स्वास्थ्य बीमा या कोई ऐसा इमरजेंसी फंड, इस तरह का चीज़ें थोड़ी सी तैयार करके रखें, ताकि आपका जो दायरा है या जो पीछे आगे आने वाली जो ज़िंदगी है वो एक मजबूत रूप ले सके।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही सभी वित्तीय जानकारियां जैसे कि बैंक खातों के विवरण और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी हमेशा व्यवस्थित रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: बिल्कुल।
0: और घर में बिल्कुल उम्र के अनुसार कुछ बदलाव भी कर लेना चाहिए, इसे भी आराम और सुरक्षा दोनों के लिहाज से तैयार करें, जैसे कि फिसलने वाले जो चिकने फर्श होते हैं, कम रोशनी वाले कॉरिडोर या असुरक्षित और ढलान वाली सीढ़ियां बुढ़ापे में बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव स्वयं ही आप 40 से 50 की उम्र तक आप करवा सकते हैं।
1: सीमा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा चेंजेस अपने घर में थोड़ा बदल लेते हैं तो ठीक है, या आपको ऐसा लगता है नहीं हमें नहीं करना है, हमारे बच्चे आएंगे उनके सामने ही हम सब करवाएंगे, तो ये तो अपने अपने ऊपर भी निर्भर करता है।
0: घर को किस तरह से सजाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है।
1: आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कैसा आपको लगता है कि कोई सपोर्ट की या कोई ऐसे सहारे की जरूरत है, तो उस तरह की कोई चीजें, कोई अटैचमेंट फिटिंग्स वैसे आप घर में लगवा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यदि आप बिल्कुल ही अकेले रह रहे हैं तो अपने पड़ोसियों या कोई पुराने आपके मित्र का जो कोई ग्रुप है या कोई स्थानीय समुदाय है, एक ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आरती, जो ज़रूरत पड़ने पर एक कॉल या आपकी आवाज़ पर आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो सके।
0: बिल्कुल। और संतानों से लगाव तो स्वाभाविक है कि भाई सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, और उन पर हर ज़रूरत के लिए पूरी तरह से आश्रित होना ये ठीक बात नहीं है, और इसलिए अपने

0: में ये भाव बिल्कुल भी ना आने दें कि ये तो बच्चों का फर्ज है कि आपको उन्हें संभालना है, और ना ही दूसरों को देकर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी सेवा क्यों नहीं करते।
1: बिल्कुल, अब हम
0: आपको
1: ये बोल
0: स्वावलंबी
1: के,
0: बनना
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, अब हाँ अभी हम ये शिकायत करने लग जाएं, अरे ये तो देखो बच्चों की ड्यूटी है ना, ये तो करना ही चाहिए, उन्हें फ़ोन तो लगाना ही चाहिए, पूछना तो चाहिए, फला दिन तो उन्हें आना ही चाहिए, क्या वो एक दिन दो दिन के लिए नहीं आ सकते? तो इस तरह की बातें करना आज के ज़माने में जहाँ की बच्चों को भी जहाँ वो रह रहे हैं हर दिन चुनौतियाँ उन्हें अपने काम में या जो भी जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत हैं वहाँ पर उन्हें देखना होता है, तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है। उन सब बातों को थोड़ा सा
0: बिल्कुल
1: रख के और घर में आप विचार विमर्श एक कर लीजिए।
0: बिल्कुल, और साथ ही आप अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखिए कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े
1: जरूरत ही ना
0: किसी
1: पड़े,
0: चीज़ की।
1: जी
0: अपने अपने फ्रेंड सर्कल को आप बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए और समाज में घुलिए मिलिए। बहुत चीज़ें हैं करने वाली, आप जो नहीं कर पाए अभी तक अपने जीवन में उसको करिए, अपने शौक़ पूरे करिए और घूमिए फिरिए। बहुत सी चीज़ें आप जो कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के साथ भविष्य की उम्मीदें क्या हैं, अपने निवास, प्राथमिकताओं और किसी भी संभावित मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हमेशा साफ और स्पष्ट बातचीत आप करें। जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में पारदर्शी चर्चा करते हैं तो इससे रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या खटास की कोई गुंजाइश नहीं बचती, बल्कि आपसी समझ, परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अधिक गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल, अब देखिए ना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं आरती, तो अकेलेपन को मानसिक कमजोरी बिल्कुल ना बनने देना चाहिए। और जैसे आपने कहा ना कि अपनी रुचि के हिसाब से और आपको जो कला पसंद है बस उन्हें अपना लीजिए और जिंदा दिली से हम जिए। और इसी से संबंधित ढेर सारे संदेश भी आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां भले ही कम हो जाए लेकिन सुरक्षित भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। सुरक्षित भविष्य केवल आर्थिक बचत का नाम नहीं है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, जीवन शैली, अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति, ये सब भी शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और अपनी पसंद की गतिविधियां जैसे हम अभी बात कर रहे थे उसमें सक्रिय रहना जीवन को बेहतर बनाता है। भविष्य सुरक्षित करने का सही समय कल नहीं आज है।
0: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है अपने आप को आप उस हिसाब से रखें कि अपने अपनी सारी ज़रूरतें आप खुद पूरा कर सकें। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अकेलापन बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक जुड़ाव ज़रूरी है। अपने परिवार, बच्चों और पुराने दोस्तों के साथ आप संवाद बनाए रखें। वरिष्ठ नागरिकों के क्लब हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं या धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़ते रहिए ताकि मन आपका व्यस्त रहे। और नई तकनीक है उसको सीखना, जैसे कि मोबाइल में कुछ चीज़ें होती हैं उनको सीखना, और साथ ही किताबें पढ़ना या कोई अपनी पुरानी आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है उसको आप पूरा कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको मानसिक रूप से मजबूत रखती हैं।
1: बिल्कुल, और मानसिक एक शांति और खुशी के लिए क्या क्या
0: गीत
1: कर सकते
0: संगीत
1: हैं?

0: तो भाई हम बात कर रहे थे कि बढ़ती उम्र में क्या किया जाए और कैसे अपना ख्याल रखा जाए। एक संदेश आया है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां और चिकित्सा खर्च दोनों बढ़ जाते हैं, बिना स्वास्थ्य बीमा के बुढ़ापे में सारी बचत खत्म हो सकती है, इसलिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई अच्छे सीनियर सिटीज़न हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, या सरकारी योजनाएँ हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो मुफ्त इलाज की सुविधाएँ देती हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए। नियमित जाँच करवाते रहिए, जैसे गंभीर बीमारी रूप ना ले ले, कोई गंभीर रूप ना ले ले, और इसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप और सक्रिय जीवन शैली को अपनाना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और इन्होंने इतनी अच्छी अपने संदेश लिख के भेजे और सबसे अपने विचार भी साझा किए और सुझाव भी दिए, तो उन पे अमल करना चाहिए। साथ ही आजाओ अब हम बात कर लें कुछ टिप्स की।
0: बिल्कुल, देखो ये जो दिक्कत आती है इन दिनों में, खासतौर पे बारिश के दिनों में, कि सीलन की एक दुर्गंध सी आने लग जाती है, घर में भी हम कितना भी ख्याल रख लें, तो ऐसे में अगर हमें थोड़ा सा कुछ पता हो कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो भाई अच्छी ही बात है कि घर में घुसते से अगर किसी को ऐसा लगे कि कुछ अलग सी गंध आ रही है, तो वो सामने वाले का चेहरा ही आपको दिखा देगा कि हाँ भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा ना हो, उसी के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो दूर से ये दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे को कुछ समय खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे, दीवारों और फर्श को गीला ना रहने दें, नमी तुरंत सुखाएं, कमरे में पंखा चलाएं ताकि हवा का प्रवाह बनता रहे, और अलमारी जूते या सामान को समय समय पर बाहर निकाल कर हवादार जगह पर रखें। सीलन वाली जगह पर बेकिंग सोडा की छोटी कटोरी रख दें, यह गंध सोखने में मदद करता है, और दीवार पर फफूंद अगर आपको दिखाई दे रही है या दुर्गंध लगा बनी है, तो आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लेकर सफाई उसकी करवा सकते हैं। ये संदेश हमारे एक सखी ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कितना भी आप पेंट कराएं या कुछ भी कराएं, उसमें तो जो सीलन की महक है वो आती है, तो इसके लिए वो क्या करती हैं कि मैं सुबह शाम उसे कभी नीम की पत्तियां हैं जैसे, है ना, उसको जलाती हैं, तो इससे जो धुआं होता है ना उससे सीलन की बदबू तो जाती है, साथ ही जो मच्छर वगैरह होते हैं ना वो भी सब हट जाते हैं, तो कपूर भी जला सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें करने से और क्या होता है ना कि सारी नमी जो है वो सूख जाती है, नमी हट जाती है और बदबू भी सारी चली जाती है और एक अच्छा सा एक अरोमा सा आ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश में हमारी सखी बताती हैं कि बारिश में सीलन की बदबू से बचाव के लिए घर की खिड़कियां को खुला रहने दें ताकि नमी अंदर ना आ पाए, और हर जगह को साफ सुथरा रखें, जहां मच्छर वगैरह हैं या पानी है उन सब जगह की सफाई करती रहें, इससे घर में नमी भी नहीं आएगी और बदबू भी घर में जो ये आ जाती है सीलन की वो भी नहीं बनेगी। तो ये इन दिनों में हमें बार बार और बहुत जल्दी जल्दी घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, ये बात तो सही है सखियों। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अभी दो दिन पहले ही तो कोई फला कोना हमने साफ़ किया था और देखो फिर से वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फफूंद सी बन गई है, या कहीं पर कुछ थोड़ा सा भी अगर कचरा या कहीं पानी इकट्ठा रह गया है कोई टंकी वगैरह में घर की, तो वो भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं घर में।
1: एक और हमारे जो श्रोता जी लिखते हैं कि इसको सीलन और दुर्गंध को हटाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शाम के समय घर में कपूर जला सकते हैं, और इससे बहुत बड़ी एक अच्छी सी खुशबू भी फैलती है, और साथ ही आप लौंग और दालचीनी और पानी में लौंग और दालचीनी उबालकर उस भाप को घर में फैलने दीजिए, इससे सीलन की बदबू तुरंत गायब हो जाएगी। एक छोटी सी कटोरी में आप नमक रख सकते हैं, है ना, और भर के कोनों में रख दें जहाँ पर सीलन ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें जो होती है ना वो हवा में मौजूद जो भी अतिरिक्त नमी होती है या बदबू होती है उसको सोख लेते हैं, और पानी में थोड़े से गुलाब जल में आप डाल सकते भी कर उसे छिड़क सकते हैं घर में। तो ये सब चीज़ें आप जो बताएं ना, ये सब चीज़ें करके, खासकर जो कपूर होता है वो तो हमने किया भी हुआ है, कपूर को और लौंग को और दालचीनी को आप एक साथ रख के अगर जलाते हैं या इसका अरोमा सा फैलाते हैं घर में थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत देर तक बनी रहती है वो,
0: बहुत देर तक बनी रहती है, और एक बड़ा सात्विक सा माहौल घर में हो जाता है ना। और एक संदेश में और ये टिप बताई है हमारी सखी ने कि आप बेकिंग सोडा और नींबू, ये आप दोनों को लेकर के थोड़ा सा बेकिंग सोडा, कॉफ़ी पाउडर और नींबू के छिलके एक कटोरी में मिलाकर रख दें, तो इससे भी जो नमी है वो सोख लेती है हवा से, और नींबू और जब भी मौसम थोड़ा साफ हो तो खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खुली रखें, और जैसे तुमने भी बताया कि कपूर और नारियल का तेल, ये लकड़ी के फर्नीचर पर कपूर और नारियल के तेल का मिश्रण लगाने से फफूंद या बदबू की समस्या दूर हो जाती है। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें और पंखे की हवा में पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें। और अगर घर के बाहर जगह है तो सबसे पहले तो घर के बाहर ही ऐसी जगह है कि जहाँ शेड वगैरह है और आप उसको रख सकते हैं, उस शेड में सुखा सकते हैं, तो पहले वहाँ अच्छे से सुखा लीजिए। और अलमारी में तो तभी रखिए जब बिल्कुल अच्छे से आपके कपड़े सूख जाएँ,
1: नहीं तो उसमें फफूंद आ जाएगी। अगर थोड़े से भी गीले
0: काले कलर के कपड़े होते हैं ना तो कैसे उसमें फफूंद आ जाती
1: बिल्कुल
0: है, और वो दिखाई देती है असल में।
1: बिल्कुल, तो जो भी गीले कपड़े हैं गीले मत रखिए, उनको बस अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप उसको अंदर रखिए। साथ ही आप अगर कहीं पे भी, एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि दीवारों में अगर नमी दिखाई दे तो समय रहते उसकी मरम्मत करानी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से बारिश की नमी को घर की परेशानी बनने से रोका जा सकता है, क्योंकि जहाँ से भी टपक रहा है पानी या जहाँ पे सीलन आ रही, बहुत बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है या पानी उसमें उसकी वजह से वहाँ सीलन आ गई है, तो उस जगह को अच्छे से आप मरम्मत करवा लीजिए ताकि वो पानी वहाँ पर आना रुक जाएगा, तो सीलन भी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी।
0: और एक हमारी सखी ने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताया है कि आप चाहें तो गुलाब जल में लैवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरकर इसे घर में स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग जगह छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे भी ताजगी बनी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: और अब अच्छा मूड बने के लिए, अच्छा मूड बनने के लिए गीत चलिए।

बल खाता वो झूमता बल खाता।

0: कब आए थे वो कब गए, कब आए थे वो कब गए, कुछ याद नहीं है।
1: भाई समय कहाँ चला जाता है, कुछ याद नहीं रहता है जब हम अपनी सखियों के साथ बात करते हैं, है ना आरती।
2: लेकिन धीरे धीरे अब समय आ गया है सखियों से विदा लेने का।
1: बिल्कुल, आप सभी को दीपा माहेश्वरी
2: और आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों 28 तारीख को हम मना रहे हैं प्रेम, विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल एक धागे का त्योहार नहीं बल्कि ये उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई बहन का प्यार छिपा होता है, अपनापन और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। बहन की राखी में छिपी होती है शुभकामनाओं की मिठास और भाई के वचन में होता है जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तो आइए अपने रिश्तों की गर्माहट को महसूस करें और मनाएं रक्षाबंधन का ये पर्व प्रेम और खुशियों के साथ। शुरू करते हैं सिलसिला हेलो फरमाइश का। बहुत सारे श्रोता अपनी बातें साझा कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में, तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम और देखते हैं कि पहला कॉल कौन सा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: मेरा नाम सिद्दीक हूँ, मैं भोपाल से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी बताइए सिद्धि जी। तो सारे काम सिद्ध हो गए आपके, सारे सपने?
1: जी
0: बढ़िया है। और क्या काम काज है आपका?
1: जी मेरा लेट मशीन का काम है, मशीन चलाता हूँ।
0: अच्छा, ये लेट मशीन क्या है, मतलब इससे क्या कुछ बनता है, जरा बताइए डिटेल में।
1: जी मैम, DHL का जॉब होते हैं वो बनाते हैं हम लोग। रेलवे का काम होता है, DHL से आता है, तो हम लोग बनाते हैं वो जॉब।
0: अच्छा, तो
1: जैसे
0: कटाई
1: नट
0: वटाई
1: बोल्ट
0: करते
1: हुए।
0: होंगे, तराशते होंगे, कटाई वटाई करते होंगे, उसको शेप में देते होंगे, है
1: जी
0: ना?
1: जी
0: बढ़िया। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, मुझे संगम फिल्म का गाना सुनना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर।
0: कि तुम नाराज ना होना। तो ये
1: जी
0: गाना किसी खास के लिए सुनवाना चाह रहे हैं या आप खुद सुनना चाह रहे हैं, पसंद है आपकी?
1: जी खुद सुनना चाह रहा हूँ।
0: लिखा कभी किसी को प्रेम पत्र आपने?
1: नहीं,
0: नहीं
1: मैंने
0: लिखा।
1: ये गाना बहुत पसंद आता मुझे, इसलिए।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। अब सुनवा रहे हैं आपको संगम फिल्म का ये गाना, जिसकी फरमाइश आपने की।

0: हेलो फरमाइश
1: जी मैम, नमस्ते
0: नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं अलंकार मार्केट देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता फार्मासिस्ट मुस्तफ़ा हुसैन बोहरा।
0: जी मुस्तफ़ा हुसैन जी, बताइए क्या हाल है?
1: मैम बहुत अच्छा, आपके आशीर्वाद से। मैम आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत बढ़िया, और आप सबकी आवाज़ें सुनकर एकदम दुरुस्त हो जाती हूँ। तो मुस्तफ़ा जी बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: देवास में अलंकार मार्केट में मेडिकल स्टोर है, हसन जी मेडिकल स्टोर के नाम से। मेरे पापा जो है प्रोपरेटर है और मैं फार्मासिस्ट हूँ।
0: अच्छा, बढ़िया। तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो कभी ऐसी दवाओं की कोई समस्या होती है कि कोई ग्राहक आकर आपसे कोई शिकायत करे किसी तरह की, ऐसा कभी कोई मौका?

0: आया है या कभी अर्जेंट कोई दवा की जरूरत पड़ी
1: मैम
0: हो तो आप?
1: वैसे तो ये सैयदना साहब की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अभी इससे कोई बहुत कम ग्राहक आते हैं कि इसको दवाई का शासन नहीं हुआ या शिकायत की हो। बाकी
0: आजकल
1: जब भी दवाई देते हैं तो ऊपर वाले का नाम सैयदना साहब का नाम लेके देते हैं कि आप उनको ठीक कर दीजिए ताकि उसको दोबारा दवाई लेने की जरूरत ना पड़े।
0: अरे वाह क्या बात है। लेकिन आजकल कुछ डुप्लीकेट दवाइयों का चलन आ गया है तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
1: जो क्या तो बिल्कुल बराबर है क्योंकि क्या है कि आजकल R&D में F&D में इतने ड्रग डेवलप इतने फॉर्मुलेशन डेवलप हो गए हैं कि एक नाम की अलग अलग बहुत सारी 10 तरह की दवाइयाँ आती है।
0: आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जब दवा खरीदें तो किस बात का ध्यान रखें?
1: मैं आपसे और तमाम श्रोताओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई दवाई आप खरीदें उसका बाकायदा लेवल पढ़ के ताकि कौन सा फॉर्मुलेशन आपका है आपको वो उससे असर करेगा कि नहीं और उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी तो नहीं है उसकी एक्सपायरी डेट कब है कब वो बनी थी उसकी जो फॉर्मुलेशन मिले हुए हैं जैसे उदाहरण के तौर पे पैरासिटामोल तो उसमें पैरासिटामोल बराबर मिलीग्राम मिला हुआ है कम ज्यादा तो नहीं है अगर ज्यादा है तो हमने को रिएक्शन तो नहीं करेगा कम मात्रा वाला दवाई रिएक्शन नहीं करेगी तो आप कम क्वांटिटी वाले ही मेडिसिन आप लीजिए।
0: जी जी जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं मरीज आता है बोलता है कि हाँ हमें सर्दी जुकाम खांसी है कोई दवा है क्या कोई और सामान लेने आया और ऐसे पूछ लिया तो जो MR होते हैं मेडिकल स्टोर वाले वो दे देते हैं कहते हैं अरे हाँ ये दवा खा लो तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है क्योंकि डॉक्टर का फर्ज मेडिकल स्टोर वालों को नहीं अदा करना चाहिए है ना?
1: जी मैम हालांकि कई मेडिकल स्टोर्स पे ऐसा होता है कि जैसे कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो मेडिकल वाले अपने कमीशन के चक्कर में कुछ और दे देते हैं तो आपसे तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहूंगा कि भारत के श्रोताओं में जो मेडिकल कराते हैं तो कृपया आप ऐसा ना करें कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वही की वही दवाई दे तो वो उस पेशेंट के लिए ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा और हमारे लिए ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा जो हम दुकान संचालक।
0: जी जी मुस्तफा जी हमें बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन है इसका क्या भेद है जरा क्लियर कीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: फर्क तो इतना रहता है मैम कि जेनेरिक मेडिसिन जो रहती है बहुत सारी जगह पर मिल जाती है और उनकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं होती है ना ही उनके लिए कोई MR वगैरह मिलते हैं। एथिकल का तो क्या है कि हर मेडिकल हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है उनकी मार्केटिंग बाकायदा हो जाती है उनके MR वगैरह आके मिल जाते हैं।
0: जी तो बताइए कौन सा गाना आपकी पसंद का हम पेश करें?
1: मैम एक्चुअल मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ कई फिल्म उनकी देखी है उनकी फिल्म आई थी BV No. 1 उसका गाना सुनना है हाय हाय मिर्ची।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन किया आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना फिल्म का नाम BV No. 1।

0: हेलो फरमाइश
1: मैं जयदीप अस्थाना इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: जी, बताइए जयदीप जी, क्या हाल है आपका और इंदौर का क्या हाल है?
1: इंदौर का बहुत बढ़िया, अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रहा है अभी तो, हिल स्टेशन जैसा।
0: अरे वाह, बारिश हो रही है मतलब?
1: हाँ हल्की हल्की हो रही है बारिश, लेकिन मौसम अच्छा है।
0: इंदौर के पास ये जो एक पहाड़ी पर मंदिर है, बाज बहादुर और क्या है वहाँ पर, कुछ दर्शनीय स्थल है ना?
1: एक तो इंदौर के अंदर ही एक देवगराड़िया है, और पहाड़ी पर तो इधर मांडव पे है।
0: मांडो, ये पहाड़ी पर जो मांडो है उसके बारे में हमें बताइए,
1: हाँ
0: हमारे श्रोताओं को, कैसे जाया जाता है और क्या है वहाँ पर?
1: मांडव इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से इंदौर से आराम से कोई भी टैक्सी वगैरह मिल जाती है। वहाँ पे एमपी टूरिज्म के अच्छे होटल्स भी हैं और प्राइवेट होटल्स भी हैं, एक दिन के लिए बहुत अच्छा स्टे है। इंदौर के आसपास ऐसे महेश्वर भी है, उज्जैन भी है, ओमकारेश्वर भी है,
0: जी, देवास भी है ना?
1: देवास भी है, तो ये सभी जगह
0: जी,
1: मंदिर हैं।
0: देवास में पंडित कुमार गंधर्व का निवास है, जो शास्त्रीय
1: हाँ जी
0: संगीत
1: हाँ
0: के
1: जी
0: चाहने वाले हैं वो तो बाकायदा उसे मंदिर की तरह पूजते हैं और वहां जाते हैं दर्शन के लिए। बहरहाल, हम ये जानना चाह
1: बिल्कुल
0: रहे थे कि
1: बिल्कुल।
0: मांडो किस लिए प्रसिद्ध है?
1: मांडव पिकनिक स्पॉट के लिए, और वहां पे बहुत पुरातत्व महल टाइप का।
0: जी, तो आप अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप?
1: मैं बिजनेस करता था, अभी तो मैंने वाइंड अप कर दिया टोटल। मेरे पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही रिलेटेड, उसकी C&F थी पूरे MP और छत्तीसगढ़ की।
0: अरे वाह, तब तो फिर आपके पास अगर कोई संगीत प्रेमी है तो रिकॉर्ड वगैरह सब मिल जाएगा,
1: हाँ मेरे
0: रिकॉर्ड
1: पास
0: सीडी?
1: बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, और मैंने MP और छत्तीसगढ़ के विविध भारती स्टेशन CD में से ही खरीदते थे।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो बंद क्यों कर दिया भाई बिजनेस?
1: ये तो मैडम पेन ड्राइव और ये डिजिटल वगैरह आया तो कंपनी ने ही वाइंड अप कर दिया। अब ये
0: जी
1: पूरा डिजिटल फॉर्मेट में बिकने या CD कैसेट बिकना ही बंद हो गई, तो कंपनी ने ही वो करा था। मैंने दूसरे बिजनेस भी करे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल वगैरह से। अब मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, यानी मास्टर्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने वाइंड अप कर दिया।
0: चलिए, मतलब बहुत मेहनत कर ली और उसके
1: हाँ
0: बाद
1: जी
0: अब
1: अब
0: आराम
1: आराम
0: का
1: कर रहे
0: समय
1: हैं,
0: बिता रहे हैं।
1: आपका विविध भारती सुनते हैं, अपने रिकॉर्ड सुनते हैं।
0: तो म्यूजिक सुनते हुए फिर गाना भी सीख लिया होगा, क्योंकि म्यूजिक का बिजनेस था तो निश्चित रूप से गाना भी गाते होंगे, तो इस समय
1: हाँ गाने तो मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैं गाता रहता हूँ, डालता भी रहता हूँ, अपलोड भी करता रहता
0: तो
1: हूँ।
0: भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा आप जब तक गुनगुना के नहीं सुनाएंगे?
1: सुना देते हैं मैडम, जो गाना मेरी फरमाइश है वही वाला सुना देते हैं।
0: जी,
1: तुमसे मिल

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्रीभूमि, असम से।
0: अच्छा,
1: मैं ऐसे में मैं बंगाली हूँ, बांग्ला कथा बोली
0: जी।
1: और बांग्ला रसगुल्ला भालोबासी। दो लाइन बोलू मैम
0: जी जी बोलिए।
1: दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, दिखाए के शरीफ बनने की आदत
0: नहीं है हमारी। जी क्या
1: सब
0: बात,
1: चाहे जैसी भी हो खुलेआम बोलते हैं, है ना।
0: बहुत बढ़िया। तो ये पंक्तियां आपने खुद रची हैं कि कहीं से किसी की?
1: नहीं, मैं इमिटेट किया है।
0: जी
1: सब अच्छा लगता है शायरी, तो
0: जी
1: छोड़ देता हूँ इस प्लेटफॉर्म में।
0: हमें तो बताइए, आपकी
1: जी।
0: असम की बात आपने कही, तो असम में रहते हैं या इस समय जो गांव का नाम
1: जी
0: लिया?
1: असम में, सुनिए ममता जी, हमारे असम में डाइवर्स टू पार्ट्स है। एक पार्ट का नाम है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरी पार्ट का नाम है बराक वैली। बराक वैली में हम इनहेबिटेंट्स है। हमारे ज्यादातर हमारे यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी का, बंगाली संस्कृति का धरोहर है। और दूसरी जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो तो लार्ज नंबर ऑफ एसामीज कल्चर है। एसामीज बिहू, एसामीज गाने जो है वो तो अवेलेबल होते हैं। वो बात करते हैं, हम तो बोलते हैं आमी तुमा के भालोबासी, वो बोलते हैं मैं तुमको, ऐसे करके क्या बोले उसका जो लैंग्वेज।
0: और बच्चे को शुवाली
1: शुवाली जी जी जी आपने सही पकड़े हैं। और हमारे यहाँ पे तो लार्ज स्केल से असम में टी गार्डन, कड़कदार चा, जायकेदार चा, क्या बात है। और वो एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत लाजवाब वो ड्रिंक है।
0: जी जी,
1: तो
0: कहाँ
1: ममता
0: कोई
1: जी, आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहते
0: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गाने का बोल ऐसे पंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार तिवारी।
0: जी प्रदीप जी, बताइए अपने बारे में।
1: मैं रेलवे में कंडक्टर था, एसी में चलता था, भुसावल, नागपुर, झांसी, दिल्ली। अब जो है 8 साल हो गए मैडम, रिटायर हो गया मैं।
0: अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको सुविधाएं दी जाती होंगी ना सरकार की ओर
1: हाँ
0: से?
1: हाँ हाँ सरकार से पेंशन मिल रही है और
0: हाँ
1: सब चीजें मिल गई है। सबसे अच्छा ये रहा कि मैं अपने बच्चों को, क्योंकि ट्रेवलिंग वाला जॉब था तो बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया
0: अच्छा
1: मैं।
0: अच्छा
1: अब
0: ओ
1: उनके बच्चों को
0: हाँ
1: बढ़ता
0: हाँ
1: हुआ देख रहा हूँ तो पुरानी चीजें याद आ रही कि यार मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा होता।
0: ओ देखिए ना, जब हम टीसी
1: जी
0: को
1: जी
0: देखते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि आप अपने परिवार को छोड़कर इतनी बीहड़, इतनी तकलीफदेह यात्रा भी करते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और बाकी सबके लिए बर्थ होती है सोने के लिए, आप लोगों के लिए बर्थ नहीं होती है, आप बैठ के यात्रा करते हैं, एक छोटी सी सीट होती है, देखा है। तो अब यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आप कुछ कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर?
1: हाँ हाँ
0: आपकी
1: बिल्कुल।
0: बहन की राखी
1: मेरी
0: आई?
1: तीन बहनें हैं, तीनों बहनें जो हैं भोपाल में आ जाती हैं राखी बंधवाने के लिए घर पे, और दिन भर बड़ा अच्छा लगता है मैडम। मिठाई वगैरह जो है बच्चों के लिए ले आते हैं, अब हम लोग तो खा नहीं पाते मिठाई। राखी जो है बच्चों में झगड़ा होता है कि ये राखी अच्छी है, ये मैं बांधूंगी, ये वो, तो बड़ा अच्छा उसे लगता है। 28 तारीख को बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी, फिर तोहफे का आदान प्रदान भी होता है ना कि भाई
1: हाँ
0: कुछ?
1: वो तो मैडम सिस्टर बड़ी है, संपन्न है, तो वो तो एक साड़ी अच्छी दे दो उनको, उसमें मान जाती हैं।
0: अच्छा जी, रक्षाबंधन पर भाई जो प्रेम से दे वही स्वीकार्य होता है बहन को, और अपनी दुआओं की तावीज भी बांधती है राखी के साथ बहन। तो चलिए बताइए अब कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: राखी धागों का त्योहार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फोन किया आपने, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: बंधा

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार मैम, मैं
0: नमस्कार
1: भोपाल मध्य प्रदेश से श्रवण सिंह गिन्नारे बोल रहा था
0: जी. बोलिए श्रवण जी, क्या हाल है आपका
1: जी। बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा फोन लग गया, कई साल
0: जी.
1: के बाद लगा है।
0: जी बिल्कुल, एक बार क्या
1: जी
0: इसके
1: हाँ
0: पहले बात हुई थी, पर
1: जी जी
0: भी
1: जी
0: कई महीने पहले. तो बताइए क्या हाल है अब भोपाल का, क्या हाल है भोपाल में, क्या गतिविधियां चल रही हैं आजकल?
1: कल बहुत बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई कल वहाँ पे भोपाल
0: ओहो
1: में। बाकी तो आसपास के क्षेत्र में सब दूर बारिश हो रही है, सभी पोखर तालाब जितने हैं भरते जा रहे हैं, डैम पानी की कमी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन बड़ा तालाब जो हमारा यहाँ बड़ी झील है भोपाल की बहुत फेमस है, बिल्कुल लबालब है, बिल्कुल इस समय बहुत लहरें उठ रही समुद्र जैसी, वहाँ पे एक देर से आई लेकिन बरसात आ गई, समय से आ गई
0: जी. तो मुंबई की बारिश ऐसे लगता है कि बाकी शहरों में चली गई है. मुंबई में बारिश नहीं हो रही इस समय, हल्की फुल्की झीसी पड़ती है बस बंद हो जाती है. हमने सुना है
1: जी जी
0: प्रयागराज
1: जी
0: में भी खूब बारिश हुई, बाढ़ आई है, और शहर के आज तो हेलो फरमाइश में बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उनके यहाँ बारिश हो रही है.
1: हाँ जी,
0: तो
1: पूरे भारतवर्ष में एक तरह से बारिश हो रही है।
0: जी.
1: और मेरी बहनें, तीन बहनें गई हैं तीर्थ यात्रा पे,
0: अच्छा, तो राखी कैसे
1: और
0: बांधेगी 28 तारीख को,
1: नहीं आज
0: रक्षाबंधन?
1: आज सभी ओंकारेश्वर में हैं, ओंकारेश्वर जो प्रसिद्ध स्थल है खंडवा जिले में,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: वहां से कल सभी बहनें हमारे गांव पे आ जाएंगी, हरदा के पास हमारा गांव है, खेती वगैरह है, तो वहां सब बहनें आ जाएंगी और मैं 26 तारीख को चला जाऊंगा, फिर हम
0: अच्छा,
1: 3-4 दिन धूमधाम से रहेंगे बहनों के साथ, उनका स्वागत करना रहता है।
0: क्या बात
1: जब
0: है भाई,
1: कोई हमारे
0: बहुत
1: यहाँ तीर्थ से जाते हैं तो उनके आने में पूरा परिवार मिलता है, हम मंदिर में उन सब स्वागत करते हैं।
0: अरे वाह.
1: कहा यह जाता है कि पहले जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो लोगों को उम्मीद नहीं होती थी कि वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, उस हिसाब से बड़ा वो परंपरा चली आ रही है अभी तक। तो नए वस्त्रों से हम उनका स्वागत करते हैं मंदिरों में, वहाँ भोजन करते हैं और
0: अच्छा,
1: फिर उनको
0: वाह
1: घर लेके जाते हैं जी,
0: वाह वाह. तो
1: गाजे
0: फिर
1: बाजे
0: तो
1: के
0: ये
1: साथ
0: बड़ा
1: घर
0: अच्छा
1: लेके
0: हो गया,
1: जाते
0: आप जाएंगे और उसके बाद
1: हैं।
0: फिर
1: जी
0: रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है, तो राखी भी बन जाएगी फिर तो.
1: जी जी जी जी
0: तो बहनों को इस
1: बिल्कुल।
0: बार रक्षाबंधन पर क्या तोहफा देने वाले हैं, कुछ सोच रखा है आपने?
1: देखिए बहनों को तो अब उनकी पसंद की बात करें तो

0: आजकल इतनी ज्यादा मार्केट में वैरायटीज हो गई है, मैं तो नगद राशि और एक लिफाफा देना ही पसंद करता हूँ बहनों को, पसंद से जो चाहे ले लीजिए।
1: जी बहुत बढ़िया। और बताइए आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
0: बढ़िया चल रहा है कामकाज, मैं इस समय टूर पे हूँ सिवनी जिले में।
1: अच्छा,
0: महाराष्ट्र की बॉर्डर पे सिवनी जिले में, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑडिट करने के लिए आया हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: और यहाँ से मैं कल शाम को रवाना हो जाऊंगा, परसों ईद मिलन करके और गाँव
1: जी
0: चला जाऊंगा बहनों से मिलने के लिए।
1: जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए हैं तो मतलब एक तरह से जंगल की सैर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो बड़े घने जंगल हैं और हरियाली बहुत है, हमने देखा है कि महाराष्ट्र के गांव एकदम हरे भरे समृद्ध हैं। तो आपने
0: जी
1: क्या
0: जी
1: देखा
0: जी
1: बताइए आप।
0: ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वहां पे मैं देखने के लिए गया था।
1: हाँ,
0: और
1: श्रवण सिंह के नारे से बात चल ही रही थी और बहुत दिलचस्प बात चल रही थी तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सतपुड़ा की बात की, सतपुड़ा की पहाड़ियां की, तो श्रवण जी आपको पता है सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बड़ी मशहूर है और बहुत ही सुंदर कविता है। तो जब भी जंगल में जाएं या जंगल की ओर या जंगल के बारे में पढ़ें तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता जरूर पढ़ें। और यहीं पर बातचीत के दौरान श्रवण सिंह किनारे जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बात उन्होंने रक्षाबंधन की है तो हम उनको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन का ये गाना। फिल्म का नाम है अनजाना, सुनते हैं ये गाना।

0: जैसे संडे के दिन हम जो सुनते हैं ना सुबह देशभक्ति का जो रहता है,
1: वंदन बार में देशगान आता है, रामचरितमानस होता है, फिर संगीत सरिता, संगीत सरिता के बाद भूली बिसरी गीत, हमें राय प्यार के, चित्रलोक,
0: तो वो भी हमें काफी पसंद आता है वो।
1: अच्छा अच्छा कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: मैं यादगार मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ, मनोज कुमार जी की।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता सिंह जी को और विविध भारती की पूरी टीम को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, पूरी विविध भारती की टीम की ओर से दिनेश जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सर धन्यवाद, आपको रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। विविध भारती के जितने भी श्रोता टीम है, पूरे रेडियो प्रेमी श्रोता प्रेमियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रहे हैं आप सोडा जी?
1: ममता सिंह जी, मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, विविध भारती का नियमित श्रोता।
0: जी, जोधपुर में राखी भाई बहनों के अलावा अन्य रिश्तों में भी बांधी जाती है, हमने सुना है, बताइए।
1: बिल्कुल, आपने सही फरमाया, बिल्कुल। ये एक धागा नहीं है, प्रेम का धागा, प्रेम का रिश्ता, टूट बंधन है ये भाई बहन का।
0: जी जी, किन किन लोगों को बांधी जाती है राखी?
1: भाई को भी बांधी जाती है, बहन को भी बांधी जाती है, मतलब धर्म का भाई भी करते हैं। जैसे किसी का भाई नहीं होता ना, तो मैंने धर्म का भाई भी बनाती है, और धर्म का भाई भी है ना, वो प्रीत निभाते हैं।
0: भाभी को भी राखी बांधी जाती है, ऐसा मैंने सुना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो लटकन वाली राखी होती है, लटकन वाली राखी, लूंगा राखी, यहाँ पे बहुत सारी राखी, अलग अलग वेरायटी की राखी मिलेगी आपको।
0: जी जी,
1: राजस्थान तो मतलब बहुत ही त्योहारों का देश है, त्योहारों का प्रदेश है, और अनेकता में एकता वाला प्रदेश है राजस्थान।

0: पत्रों का शहर भली है, यहाँ के पत्र मशहूर है, पत्रों का शहर भली है, लेकिन यहाँ के लोग पत्र दिली है। यहाँ आज भी मेहमानों के आगमन होता है तो आज भी मेहमानों के राव में फूल बिछाए जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, मेहमानबाजी के लिए मशहूर है और बहुत अच्छा।
0: नंबर वन
1: रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं सुबह से?
0: सेवाया बनाते हैं और बहनें आती है, राखी बांधते हैं और बहन को वचन देते हैं उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन एक रक्षा का सूत्र होता है, बंधन होता है। जब भी बहन पर कोई विपदा आती है, संकट आता है, तब भाई उसके साथ खड़ा रहता है। और ऐसी परंपरा है कि हुमायूं मल्क जो कर्मा थी ना, सिपाही जो हुमायूं को राखी भेजी थी, तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और उन्हें सिर काट के दे दिया था।
1: जी जी।
0: और जब भी उन पर लड़ी हुई थी तो वो गए थे उनकी लड़ी में, कर्मावती ने राखी भेजी थी।
1: जी जी। और रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र आता है, वो तो सभी को पूरे परिवार में एक दूसरे को बांधा जाता है।
0: आपको पता होगा मैडम, राजस्थान में तो जब खेती करने के लिए हल चलाते ना, उस हल पर भी राखी बांधते, ऐसी भी परंपरा है।
1: बिल्कुल सही बात है, दरवाजे पर भी राखी बांधी जाती है उस दिन। तो
0: ममता जी, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता। ममता जी, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: जी क्या बात है भाई। और दिल मिलाने के लिए बहुत जरूरी होता है एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे की बात को गौर से सुनना और उस पर अमल करना।
0: हाँ जी मैम,
1: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं मेरी बहन को डेडिकेट करूंगा, कि मेरी बहन का गाना, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। हरे राम हरे कृष्णा मूवी का है, किशोर दा की आवाज़ में, देवानंद पर फिल्म का गाना है।
1: जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद फोन किया आपने। अब आपके जोधपुर शहर में हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हरे राम हरे कृष्णा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव बिटोड़ा भोयर जिला वाशिम महाराष्ट्र से योगीराज मस्के बात कर रहे हैं।
0: योगीराज मस्के जी, आपकी मनचाहे गीत में भी चिट्ठियाँ आपके नाम की आती हैं,
1: जी
0: तो पत्र भी लिखते हैं?
1: जी अभी तो पत्र कम हो गए मैडम जी, मिलते कम हैं।
0: आपको बता दें, विविध भारती में पत्रों की संख्या फिर वैसी ही हो गई है।
1: लोगों ने लगभग बहुत हद तक श्रोताओं द्वारा बहुत ही प्यार दिया गया है विविध भारती को।
0: जी बिल्कुल सही बात है, और उस प्यार को फिर आंखों पर लिया है विविध भारती ने। तो मस्के
1: जी
0: जी, जरा बात पत्र की चली थी, तो बताइए, पत्र लिखने की परंपरा अब जैसे कम हो रही है, तो क्या
1: जी
0: आप किसी को पत्र लिखते रहे, पहले लिखते रहे अपनी बहन को,
1: जी
0: भाई को?
1: लगभग श्रोताओं से जुड़ा हुआ पत्रों से ही शुरू हुआ था, तो वो सिलसिला आज कम हो गया है। जैसे श्रोताओं के लिए फोन वगैरह का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इसी कारण से कम हो गया। नहीं तो रेडियो केंद्र हुए और विभिन्न विधाओं में आज भी खत लिखे जाते हैं, मैं तो
0: जी
1: लिखता हूँ।
0: जी बिल्कुल, और खास मौके पर तो पत्र लिखना ही चाहिए, जैसे रक्षाबंधन है।
1: खास मौके पर तो निरंतर लिखे जा रहे हैं, लिख भी रहा हूँ। खतों का मिलना दूभर हो रहा है, बस बड़ी दिक्कत से मंगवाने पड़ते हैं दोस्तों से।
0: जी जी ग्रीटिंग की परंपरा थी, ग्रीटिंग अपने हाथ से बना के भेजे जाते थे, कुछ अलग ही
1: ग्रीटिंग भी
0: समय।
1: थी बाद में। शुरुआती समय में तो मुझे याद है 75 पैसे का अंतर्देशीय आया करता था।
0: और वो ग्रीटिंग जब आते थे तो ग्रीटिंग को बहुत समय तक अपने टेबल पर और स्टडी में सजाया जाता
1: मैंने
0: था
1: तो
0: ना?
1: लगभग सजोए रखा हुआ है। वो तो ये बात है कि खत एक अलग चीज है, उसमें सब कुछ भाव तो छोड़िए, पर वो उस आदमी का फिल्मों में दिखाया जाने वाली बात नहीं है, पर सच में आदमी दिखता था। अगला जो भी व्यक्तित्व है, हम जिस व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तित्व हमें सीधे हमसे रूबरू होता था खत के द्वारा।
0: जी जी जी
1: जी तो आज फिल्म का नाम है हीना और गीत के बोल है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए।
0: बहुत बढ़िया गाना चुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मस्के जी। अब बातचीत को दे रहे विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अम्बेडकर चौक खोराई जिला सागर से आपका नियमित श्रोता राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम।
0: जी परमानंद जी, बताइए क्या हाल है आपका?
1: बड़ी काम कर बड़का
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पिक्चर का नाम हिमालय की गोद में और उसके गाने के बोले चांद सी महबूबा हो।
0: जी मुकेश की आवाज में ये गाना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक कृपया वे हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है और हजारों लोग लापता हैं। अधिकारी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 1,300 से अधिक लोग लापता हैं, इनमें 30 से अधिक देशों के नागरिक शामिल हैं। सबसे अधिक लापता लोगों में भारत के नागरिक हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
2: हमारी एम्बेसी वहां के सरकार से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से वहां से निकाला जाए। 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये लोग वहां से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे।
1: चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव से निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादिर जवारोप के निमंत्रण पर 21 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष SCO की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ भी है। भारत वर्ष 2017 में संगठन का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देशभर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्राप्त हो। मेरा युवा भारत लेह ने EJM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह की NSS इकाई के सहयोग से खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 250 विद्यार्थियों और युवा शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि के हित के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि भारतीय दूतावास आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानवीर पहल में जनभागीदारी का आह्वान किया है। दानवीर पहल के अंतर्गत व्यक्ति और संस्थाएं सत्यापित ग्राम पंचायतों को सीधे डेस्कटॉप कंप्यूटर दान कर सकते हैं। ये प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष A. बालकृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनका जीवन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और सेवा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के कार्यों के लिए समर्पित था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा। फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में श्रीलंका ने खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that contact has not been established with 288 Indian nationals who were present in Nepal when the tragedy occurred. They include 73 Indians who were working on the Trishuli One power project. He said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side. As per information currently available, there are 288 Indian nationals who remain uncontactable.
3: He said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety. Mr. Jaiswal said that India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which will function around the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. The death toll in the massive flash floods in Nepal today rose to 270 as authorities in Nepal race against time to find thousands of missing people, including 288 Indian tourists, in one of the country's worst disasters in recent years. The flash floods yesterday wreaked havoc across three districts in Nepal. Nepal police said that 93 more bodies were recovered today. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many were foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing, mainly from India, the United States, Malaysia, Ukraine, Australia, Britain, Canada, South Korea, Singapore, Germany, and Russia.

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी गुड्डी फिल्म से। इस भजन को गाया था वाणी जयराम ने, संगीत दिया था बसंत देसाई ने और बोल लिखे थे गुलजार ने। कार्यक्रम का अगला भजन काजल फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोंसले ने और संगीत दिया है रवि ने।

भजन फिल्मों से अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ ये भजन शागिर्द फिल्म से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
1: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

सृजन फिल्मों से अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:25 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में। जी हाँ, स्टूडियो में हम आ पहुँचे हैं आपका कार्यक्रम युवा मंच लेकर। और आज का सेगमेंट रहेगा हमारे इस कार्यक्रम का रोजगार समाचार, और साथ में ही बातें होंगी कुछ विज्ञान जगत की भी। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मनोरंजन करना कैसे भूल सकते हैं। सुनवा रहे हैं हम आपको ये गीत

जी हाँ, अब हम लेकर आ पहुँचे हैं आज के कुछ रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के आधार पर निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों के आयोग के ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन ORA आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने का लिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर। जी हाँ, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2026 रात्रि 11:59 तक। इसके बाद आवेदन लिंक जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। पद रहेंगे इसमें कार्मिक विभाग हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HPAS ग्रुप ए राजपत्रित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 18 और रहेगा टोटल 56,100 से 1,70,500 तक। कुल पद हैं 4, अनारक्षित 1, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 पद रहेगा और अनारक्षित 1 पद, अनुसूचित जाति का भी 1 पद और ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा पद खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप ए, जी हाँ, और वेतनमान रहेगा 53,600 से 1,70,100 तक। इसके कुल 10 पद हैं, अनारक्षित 5 हैं, अनारक्षित जो है 1,

अनुसूचित जनजाति के लिए एक और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दो पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी एक पद है।

विद्युत विभाग यानी कि हिमाचल प्रदेश पद जिला कोषाधिकारी ग्रुप ए, जी हाँ, इनका वेतन रहेगा 48,700 से 1,54,300 रुपए और कुल पद एक है। और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी एक पद रहेगा, जी हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग पद जिला नियंत्रक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ग्रुप ए और इनका वेतनमान रहेगा 48,700 से 1,54,300 तक और कुल पद एक, अनारक्षित एक। और अब बात करेंगे हम राजस्व विभाग की, तो हिमाचल प्रदेश पद तहसीलदार ग्रुप बी, जी हाँ, इनका वेतनमान 46,000 से 1,46,500 तक और इसके कुल पद हैं 6, अनारक्षित 3, अनुसूचित जाति का एक पद और अनुसूचित जनजाति के 2 पद रहेंगे। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें, hppsc.hp.gov.in पर।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
3: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
2: जी डॉक्टर साहब,
3: सिर्फ इसे ही नहीं, सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
4: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम युवा मंच, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी हाँ, इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, पात्रता, परीक्षा शुल्क, परीक्षा योजना तथा ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखें hppsc.hp.gov.in पर।

मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके

देवा दोस्तों, अब हम बात करेंगे विज्ञान जगत की। जी हाँ, जो आपको ले जाता है धरती से लेकर आकाश गंगाओं तक और कोशिकाओं से लेकर डायनासोरों तक, विज्ञान की दुनिया की सबसे ताज़ा और दिलचस्प खबरों तक। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले अंतरिक्ष की एक बड़ी खबर। सबसे पहले बात नासा की। नासा नया शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन रोमन स्पेस टेलीस्कोप आखिरी उड़ान तैयारियों के लिए स्वीकृत कर दिया गया है और इसे स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से जल्द प्रक्षेपित किया जाना है। यह दूरबीन ब्रह्मांड के विस्तार, उसके इतिहास और दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन करेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हमें ब्रह्मांड को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। इसी बीच खगोलविदों ने एक दुर्लभ मेगा अर्थ यानी अत्यंत विशाल चट्टानी ग्रह की खोज की है, जिसे गलियेज 523 बी नाम दिया गया है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से कहीं बड़ा और भारी है और इस तरह के विशाल चट्टानी ग्रहों की खोज वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करती है कि ग्रह किस तरह बनते और बढ़ते हैं। और एक दिलचस्प घटना, जी हाँ, स्पेस एक्स के एक पुराने फाल्कन 9 रॉकेट का हिस्सा चंद्रमा से टकरा गया, जिससे वहाँ 60 फुट चौड़ा एक नया गड्ढा बन गया। नासा के लूनर रिकॉनिनेंस ऑर्बिटर ने इस टक्कर की साफ तस्वीरें भी खींची हैं, जिनमें चंद्रमा की सतह के नीचे दबी हुई नई सामग्री भी दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। ग्रीनलैंड में पीटरमैन ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया है, इतना बड़ा कि उसको आकार लगभग पूरे मैनहट्टन शहर जितना है। उपग्रहों ने कई दिनों तक इस बर्फ की चट्टान में दरारें फैलते हुए देखा और आखिरकार यह विशाल बर्फ का टुकड़ा समुद्र में अलग हो गया। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन के असर की एक और बड़ी मिसाल मान रहे हैं। एक अच्छी खबर भी है कि शोधकर्ताओं ने पौधों के बेकार अवशेषों यानी लिगिन को उपयोगी रसायनों में बदलने के लिए एक बेहद असरदार उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट विकसित किया है। इससे कृषि अपशिष्ट के बेहतर और पर्यावरण अनुकूल इस्तेमाल का रास्ता खुल सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कई दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। 5 लाख से अधिक लोगों पर हुए एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने शिंग्रिक्स नाम का सिंगल्स वैक्सीन लगवाया, उनमें अगले 4 सालों में डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा 24% तक कम पाया गया। यह शोध वैक्सीन और मस्तिष्क स्वास्थ्य के बीच के रिश्ते को समझने में एक अहम कदम है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से इंसानी DNA के एक छुपे हुए ऑन स्विच यानी जीन को सक्रिय करने वाले हिस्से को समझने में सफलता पाई है। करीब 5 लाख DNA अनुक्रमों का विश्लेषण करके इस मॉडल ने लगभग 60% इंसानी जीन्स में यह विशेष स्विच पहचान लिया। यह खोज भविष्य में अनुवांशिक बीमारियों को समझने में मददगार साबित हो सकती है।

एक और शोध में पाया गया कि डिप्रेशन यानी अवसाद से जूझ रहे वयस्कों के मस्तिष्क में नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया बाधित होती दिखी है, जिससे यह समझना आसान हो सकता है कि डिप्रेशन याददाश्त और भावनाओं को किस तरह प्रभावित करता है।

तो युवा दोस्तों, आज की विज्ञान जगत की नई खबरों के साथ आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है। और विज्ञान हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है, कभी अंतरिक्ष की गहराइयों से तो कभी अपने ही शरीर के भीतर से। जिज्ञासा बनाए रखिए, सवाल पूछते रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला अंकित धीमान से। अब अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया को दीजिए अनुमति। युवा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर समय है कार्यक्रम मोजांग ग्राइंडियां का, विषय रहेगा कृषि उन्नति योजना। इस विषय के बारे में आज आपसे बातचीत होगी। शाम 7:10 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम किसान वाणी रिले किया जाएगा। रात्रि 8:00 आकाशवाणी शिमला से ही विधानसभा समीक्षा रिले की जाएगी। 8:15 पर लुत्फ उठाइएगा विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। रात्रि 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम में एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा अभिनेत्री नेहा धूपिया पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीत। 9:30 पर फिल्मी और गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम रंगे गजल पेश किया जाएगा। रात्रि 10:00 आनंद लीजिएगा हिमाचली गीतों लोक गीतों का, चित्रपट संगीत पुरानी फिल्मों से गीत आप सुनिएगा रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला इसका। हमारे इर्द गिर्द किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में बने फोरलेन में वाहनों की स्पीड लिमिट बढ़ाई जाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी फोरलेन में स्पीड प्रति घंटा 60 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि स्पीड के कारण फोरलेन में कोई दुर्घटना ना हो और इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से सर्वे कराया जाएगा। विधायक मलिंद्र राजन के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्पीड़न मामले पर शिकायत दर्ज करने को लेकर सरकार नया नियम बनाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायत को गोपनीय रखने के लिए नियम बनाए जाएंगे ताकि महिलाएं अपनी शिकायत को पूरी तरह व्यक्त कर सकें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेपाल में हुई भीषण त्रासदी पर गहरा दुख जताया है। विधानसभा में आज उन्होंने कहा कि नेपाल में आई आपदा बेहद बड़ी है और जानकारी के मुताबिक 133 भारतीय नागरिकों के लापता होने की सूचना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के किसी नागरिक के लापता होने की जानकारी अभी तक केंद्र सरकार की ओर से उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। नेपाल त्रासदी को लेकर प्रदेश विधानसभा में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आपदाओं के प्रभाव का पूरे एशियाई क्षेत्र में अध्ययन किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इसकी प्रक्रिया दिल्ली स्तर पर चल रही है। जब तक केंद्र सरकार की ओर से औपचारिक मंजूरी नहीं मिलती, तब तक हिमाचल ये नहीं मान सकता कि 1500 करोड़ रुपए की राशि मिल गई है।
1: हिमाचल में तो 2023-24 के बाद हमेशा डिजास्टर की मीटिंग होती रहती है और डिजास्टर से संबंधित जो भी हमारी जानकारियां उसको हम लोगों को शेयर करते हैं। पर 1500 करोड़ का तो अभी इंतजार ही कर रहे, दिल्ली से चली नहीं रही हूँ। जब तक दिल्ली से चलेंगे नहीं 1500 करोड़ रुपया, कोई अप्रूवल आएगी नहीं हमारे पास, तो उसको हम मान नहीं सकते।
0: इस बीच लॉटरी को लेकर विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉटरी भाग्य का खेल है और किसी व्यक्ति पर इसे खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है, जिसकी इच्छा होगी वही लॉटरी खरीदेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर दिए गए पत्र और उठाए गए सवालों पर भी गौर किया जाएगा।
1: कोई फोर्स नहीं है कि किसी को लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा। जिसकी इच्छा है, जिसकी चाहत होगी वो लॉटरी ले, जिसकी इच्छा नहीं होगी, जिसकी चाहत नहीं होगी वो ना ले।
0: प्रदेश में दीपावली से लॉटरी शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले की विपक्षी दल भाजपा ने कड़ी निंदा की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि

0: सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी आर्थिकी सुधारने के लिए लॉटरी को फिर से शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉटरी के कारण प्रदेश में पहले भी कई घर बर्बाद हुए और इसी कारण भाजपा सरकार ने इसे बंद किया था। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार युवाओं को बर्बाद करने के लिए लॉटरी शुरू कर रही है। उन्होंने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापिस लेने की मांग की।
1: जो लोग इस लॉटरी को जबरदस्ती लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, साफ मंशा यही जाहिर होती है कि आप इसके पीछे प्रदेश का आर्थिक हित नहीं, अपना निजी आर्थिक हित। और लॉटरी जब बंद की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोगों के घर बिक गए, जमीन बिक गई, जेवरात बिक गए, चाहे वो नशा चिट्टे का है, चाहे वो नशा किसी दूसरी चीज का है, उसी तरह का ये नशा। और इस लत में कोई आदमी अगर लग जाता है तो उसे मालूम नहीं पड़ता कि वो कितना नुकसान कर रहा है। नहीं, हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी जो है वो बर्बादी की ओर बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। इस सारी चीज को लेकर के सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस वक्त लॉटरी की शुरुआत करके एक नया रास्ता उस तरह से बर्बादी के लिए खोलना चाहिए।
0: प्रदेश सरकार ने राज्य में 12 से 15 वर्ष की आयु वाले अनुबंधित यात्री वाहनों यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल के संचालकों को फिलहाल राहत दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा और वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर आज सदन में वक्तव्य के माध्यम से सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर अनुबंधित यात्री वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष नहीं कर सकती और मोटर वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में केंद्रीय प्रावधान में बदलाव के बिना राज्य स्तर पर आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लेना संभव नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के तहत वाहनों की निर्धारित आयु सीमा 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष की गई है और ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। FM बैंड 103.4 MHz पर शाम के 6:06 होने को है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ।
3: कच्चे धागों का ये रिश्ता।
2: सुरमई सांझ सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आगाज आज हम कर रहे हैं रक्षाबंधन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसके गाया है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने।

0: अभी आप सुन रहे थे बाजीराव मस्तानी फिल्म से ये गीत, जिसे गाया था अरिजीत सिंह और फरहान साबरी ब्रदर्स ने, और संगीत दिया था संजय लीला भंसाली ने, और बोल थे एएम तुराज के।
1: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से, और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे गुजारिश फिल्म से ये गीत शैल हाडा और राकेश पंडित की मिली जुली आवाजों में। संगीत दिया था संजय लीला भंसाली ने और बोल थे तुराज के।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: इश्क है तुमसे, इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सिट्स पर। आवाजें हैं अलका याग्निक और शान की। संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और कार्यक्रम है सुरमई सांझ। अभी आप सुन रहे अपने रेडियो दोस्त रेणु मनकोटिया के साथ।

और ये रही कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। आ अब लौट चलें इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

सभी ग्रामीण किसान बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम मोजांग ग्राइंडिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जी हाँ, कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं इस लोक भेंट के साथ।

जी हाँ, कार्यक्रम है मुझांग कराई दिया। आज हम बात करेंगे उस योजना की जो सीधे आपके खेत, आपकी फसल और आपकी जेब से जुड़ी है। जी हाँ, बात हो रही है कृषि उन्नति योजना की। तो चाय का कप हाथ में लीजिए, क्योंकि अब हम इस योजना के बारे में आपको बताएंगे कि क्या इसका फायदा और कैसे मिलेगा और आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं। हमारे देश में खेती सिर्फ एक काम नहीं, एक परंपरा है, एक जीवन शैली है, लेकिन मौसम की मार, बढ़ती लागत और सीमित संसाधनों के बीच किसान भाइयों को कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों को

0: एवं बेहतर बनाना। तो सीधे शब्दों में हम कहें तो ये योजना खेत की मिट्टी से लेकर मंडी तक हर कदम पर किसान का साथ देने की कोशिश करती है।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: अभी आप सुन रहे थे राज प्रभाकर का गाया हुआ ये लोकगीत।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है। इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
3: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जाँच करवाएं और अपनी आँखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में, हमारा आज का विषय है कृषि उन्नति योजना। जी हाँ, चलिए अब ज़रा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस योजना के अंदर किसान भाइयों के लिए क्या क्या है। जी हाँ, पहला मिट्टी की जांच और सेहत। जैसे हम अपने सेहत के लिए समय समय पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वैसे ही खेत की मिट्टी को भी जांच की ज़रूरत होती है। इस योजना के तहत मिट्टी परीक्षण को बढ़ावा दिया जाता है ताकि किसान को पता चले कि उसके खेत में कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना है, ना कम ना ज़्यादा, यानी खेती में साथ ही मशीनों का इस्तेमाल, ट्रैक्टर, थ्रेशर, बीज बोने की मशीनें। जी हाँ, इन्हें खरीदने पर किसानों को अनुदान या सब्सिडी दी जाती है ताकि मेहनत भी कम लगे और काम भी तेज़ी से हो। तीसरा है फसल विविधीकरण, यानी एक ही फसल बार बार बोने की बजाय दलहन, तिलहन और मोटे अनाज यानी मिलेट्स जैसी फसलों को भी अपनाना। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है और बाजार में मांग बढ़ने पर किसान को बेहतर दाम भी मिल सकता है। और चौथा है वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए मदद। जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा कम है और खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है, वहां के किसानों के लिए विशेष सहायता का प्रावधान है, जैसे जल संरक्षण के उपाय और उपयुक्त बीजों का वितरण। सोचिए दोस्तों, बीजें मिट्टी की सेहत सुधरे, मशीनें सस्ती मिले, फसल में विविधता आए और सूखे इलाकों को भी सहारा मिले, यही तो है असली विकास, है ना? जी हाँ।

जी हाँ, बहुत ही मीठा सा ये लोकगीत सुनील राणा की आवाज़ में अभी आपने सुना। अब सबसे ज़रूरी बात कि ये जो योजना है जिसके बारे में अभी हमने बात करी, कृषि उन्नति योजना के बारे में, तो

इस योजना का फायदा लेने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें। अपनी जमीन के कागजात, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी साथ रखें। संबंधित उप योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरें। कई राज्यों में यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। आवेदन के बाद खेत का सत्यापन होता है और स्वीकृति मिलने पर अनुदान राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाती है। याद रखिए, योजनाओं की शर्तें और प्रक्रिया राज्य के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती हैं, इसीलिए अपने ज़िले के कृषि कार्यालय से पूरी जानकारी ज़रूर लें। और भाइयों, किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में मत आइए, सारी जानकारी सरकारी कार्यालय में मुफ्त मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कृषि उन्नति योजना की कि कैसे ये योजना मिट्टी की सेहत से लेकर मशीनीकरण, फसल विविधता और सूखे इलाकों की मदद तक हर मोर्चे पर किसान भाइयों का साथ देने की कोशिश करती है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है या आपने इस योजना का फ़ायदा उठाया है तो आप हमें भी बता सकते हैं, ताकि और जो हमारे किसान मित्र हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। खेती है तो जीवन है, और जानकारी है तो तरक्की है। तो अपनी माटी से जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए और सरकारी योजनाओं का पूरा फ़ायदा उठाइए। मैं आपसे अब लेती हूँ इजाज़त, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान। चलते सुनवा रहे हैं एक और आपको लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजांग राइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी श्रृंखला के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
2: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हर जोखिम

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। इस अंक में मैं हूं कुलदीप
7: और मैं हूं हेमराज शर्मा।
6: किसान श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान वाणी के माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार व शनिवार को संध्या 7:10 से 7:45 तक किया जाता है। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा। हेमराज जी, कैसे हाल चाल है?
7: मैं ठीक हूँ कुलदीप जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: बहुत ही अच्छे हेमराज जी, और हम आशा करते हैं कि हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन हैं वो भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए हेमराज जी, बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोग और कीट जो है हमारी फसलों में लग जाते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आपको समय समय पर अपने खेतों में जाना है, देखना है, बाग बगीचों में जाना है कि किसी प्रकार का कोई रोग या कीट आपकी फसलों में तो नहीं लगा है। अगर आपको कोई भी कीट या रोग आपको अपनी फसल में दिखाई देता है तो समय रहते उसके निदान के लिए आपको उपाय करने हैं, क्योंकि क्या होता है कि बरसात के मौसम में चाहे रोगों की बात करें बहुत जल्दी फैलते हैं और आपकी फसलों को काफी ज्यादा हानि पहुंचाते हैं।
7: बिल्कुल कुलदीप जी, देखिए कार्यक्रम में क्या कुछ है इसके बारे में अगर बात करें तो काम की बातों के अंतर्गत हम बात करेंगे फ्रास्टबिन के मुख्य रोग व उपचार इस विषय के बारे में, उसके बाद पहाड़ी लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे किसान श्रोताओं का, और फिर जानकारी पूर्ण बातचीत किसान भाइयों को सुनाई जाएगी जिसका विषय है आधुनिक समय में गाय की उपयोगिता। रोहिताश चंद्र से बातचीत करेंगे निशा शर्मा। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं काम की बातों के अंतर्गत फ्रास्टबिन के प्रमुख रोग व उपचार। देखिए कुलदीप जी, फ्रास्टबिन की अगर बात करें तो फ्रास्टबिन हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्रों में नगदी और बेमौसमी सब्जी व बीज के लिए उगाई जाती है। निचले क्षेत्रों में इसकी खेती बसंत

0: ग्रीष्म और पतझड़ शीत ऋतु में भी की जाती है, जबकि मध्य तथा ऊंचे क्षेत्रों में इसकी बिजाई मार्च से जून तक की जाती है। प्रदेश में इसके अंतर्गत लगभग 2037 हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जिसमें प्रतिवर्ष 19,200 टन सब्जी का उत्पादन होता है।
1: जी देखिए हेमराज जी, हमारे किसान भाई कोई भी फसल लगाते हैं अपने खेतों में, चाहे हम सब्जी फसलों की बात करें, फल फसलों की बात करें, तो सबसे पहली बात आती है उन्नत किस्मों की।
0: जी
1: कौन सी जो उन्नत किस्में हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं जिससे उनका उत्पादन है वो बढ़ जाए और अच्छा लाभ उनको अपने सब्जी उत्पादन से यानी फसल के उत्पादन से मिल सके। तो फ्रांसबीन की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें आती है, देखिए अगर बोनी या झाड़ीदार किस्में हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगाना चाहते हैं तो इसमें आती है कंटेंडर हो गई, पूसा पार्वती है, बीएल बोनी एक है, प्रीमियर किस्म है, और साथ ही साथ अर्का कोमल किस्म भी है जो हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: किसान भाइयों, इसकी फलियां गहरे हरे रंग की होती है, रेशे रहित होती है तथा नीचे की ओर मुड़ी हुई होती हैं। औसत उपज की जहां तक बात आती है लगभग 75 से 100 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन किसान भाइयों आप ले सकते हो।
0: बिल्कुल। और दूसरी जो किस्म है फ्रांसबीन की, उसका नाम है पूसा पार्वती। इसकी जो फलियां हैं वो हरे रंग की, रेशे वाली और चपटी तथा सीधी होती है। औसत उपज 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी रहती है। और फिर आती है वीएल बॉनी किस्म। इसके जो फलियां हैं वो भी हरे रंग की होती हैं, रेशा रहित होती है, मोटी तथा नीचे से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। औसत उपज 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। बात करें प्रीमियर किस्म की, तो इसकी फलियां भी गहरे रंग की होती है, रेशे रहित तथा सीधी होती है। औसत उपज 75 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अर्का कोमल की बात करें तो ये एक नई किस्म है और इसकी फलियां रेशे रहित होती है, और ये एंथ्रेक्नोज बीमारी के लिए भी प्रतिरोधी किस्म है।
1: जी तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई बोनी या झाड़ीदार किस्मों की। साथ ही साथ अगर किसान भाइयों आप बेलनुमा या ऊंची किस्में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो उन्नत किस्में हैं उनकी बात भी हम करना चाहेंगे। देखिए इसमें आती है SVM एक, और साथ ही साथ लक्ष्मी जिसे P37 भी कहा जाता है, और कैंचुकी वंडर किस्म भी आप लगा सकते हो अगर आप फ्रांसबीन की बेलनुमा या ऊंची किस्में लगाना चाहते हैं। बात करें SVM एक की तो इसकी फलियां गहरे हरे रंग की, गोल सीधी एवं कुछ एक रेशेदार होती है। ये एंगुलर लीफ स्पॉट प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। औसत उपज की जहां तक बात आती है 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी उपज ले सकते हो। बात करें लक्ष्मी किस्म की या P37 की तो इसकी फलियां आकर्षक हरे रंग की होती है, तीन फलियां प्रति गुच्छे के हिसाब से इसमें फलियां लगती है, चपटी गोल तथा रेशे रहित होती है। औसत उपज की जहां तक बात आती है 160 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जो है लक्ष्मी किस्म से उपज ले सकते हैं। बात करें कैंचुकी वंडर की तो इसकी फलियां लंबी गुद्देदार होती है और मुड़ी हुई होती है, लगभग 65 से 70 दिनों में ये तैयार हो जाती है। औसत उपज की जहां तक बात आती है 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी उपज ले सकते हो।
0: जी बिल्कुल। इसके बाद कुलदीप जी, अब बात करते हैं फ्रासबिन में कौन कौन से रोग लग जाते हैं जो फ्रासबिन की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, और इनका निवारण हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रासबिन में जो रोग लगता है उसका नाम है एंथ्रेक्नोज रोग। इस रोग के कारण फलियों पर भूरे रंग के कैंकर दिखाई देते हैं, और इसके उपचार की बात करें तो किसान भाइयों को चाहिए कि स्वस्थ बीज का प्रयोग करें। बीज का उपचार बेविस्टिन 5 WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से करें। रोग से प्रभावित क्षेत्रों में फसल पर आरंभ से ही 8 से 10 दिन के अंतर पर बेविस्टिन 50 WP 5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर, या फिर इंडोफिल M45 25 ग्राम 10 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें। और दूसरा जो रोग फ्रासबिन की फसल में लगता है उसका नाम है राइजोक्टोनिया बैब ब्लाइट। इसमें क्या होता है कि भूमि के साथ ही तने पर विशेष किस्म के लाल भूरे रंग के धसे हुए चिन्ह बनने लगते हैं। उपचार के लिए बीज का उपचार बेविस्टिन 50 WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम से करें। रोग के आने पर गर्म व आर्द्र वातावरण में मेविस्टिन 50 WP 5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें। खेत को साफ रखें और बहुफसली चक्र अपनाएं।
1: जी, ये तो हेमराज जी आपने बात की वेब ब्लाइट की, साथ ही साथ देखिए फ्रास्बीन की फसल में एंगुलर लीफ स्पॉट रोग भी लग जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा हानि जो है फ्रास्बीन की फसल को पहुंचाता है। तो इसके लक्षणों की बात करें तो पत्तों की निचली सतह पर लाल भूरे कोणदार धब्बे पड़ जाते हैं, जिनके ऊपर काले रंग के कांटे की तरह आपको चिन्ह दिखाई देंगे। तो अगर इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो उसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्वस्थ और उन्नत किस्में ही बोनी है। उन्नत किस्मों की जानकारी हम अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों को पहले ही दे चुके हैं। साथ ही साथ बीज बुआई से पहले बीज का उपचार बेवस्टीन 50 WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम से आपको करना है। संक्रमित क्षेत्रों में 2 वर्षीय फसल चक्र आपको अपनाना है, इससे भी आप लीफ स्पॉट से जो अपनी फसल है उसका बचाव कर सकते हैं। बिजाई के 35 दिन बाद बेवस्टिन या मेवस्टिन 50 WP 5 ग्राम प्रति 10 लीटर या फिर इंडोफिल M45 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी का 15 दिन के अंतराल पर आपको छिड़काव करना है। अगर ये छिड़काव आप समय रहते करते हैं तो एंगुलर लीफ स्पॉट से आप अपनी फ्रासबीन की फसल का बचाव कर सकते हो।
0: बिल्कुल जी। और एक अन्य रोग जो फ्रासबीन को प्रभावित करता है उसका नाम है फ्लोरी लीफ स्पॉट रोग। इसमें क्या होता है कि फ्रासबीन के पत्तों के निचली और आटे जैसे सफ़ेद विशिष्ट धब्बे पड़ने लगते हैं, और ये रोग अगर फ्रासबीन में लग गया है तो बुआई के लिए पहले तो आपने देखिए स्वस्थ बीज ही लेना है, संक्रमित क्षेत्रों में 3 वर्षीय फसल चक्र आपने अपनाना है। कुलदीप जी, एक अन्य रोग जिसका नाम है फ्यूसकास ब्लाइट, इस रोग के कारण पत्तों पर छोटे छोटे पीले रंग के पारदर्शी धब्बे दिखने लगते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं तथा उन पर लाल धारियां और चिन्ह भी नजर आते हैं, और इसके लिए रोग मुक्त बीज बोना है। बीज का उपचार जो है 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 25 ग्राम हेक्सा कैप के 10 लीटर पानी के घोल में 4 घंटे भिगोकर करना है।
1: जी, साथ ही साथ देखिए कॉमन मोजेक रोग भी है, जिसे सामान्य पत्ता मुड़न रोग भी कहा जाता है। ये भी जो रोग है वो फ्रास्बीन की फसल को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो इसके लक्षणों की बात करें, पत्तों में क्या होता है कि हरेपन का अभाव आ जाता है और बाद में ये भीतर की ओर मुड़ने लगते हैं। शिराओं के आसपास मुरझान सबसे पहले आता है, फलियाँ कम लगती है, उनमें बीज भी कम बनते हैं। तो अगर इस प्रकार के लक्षण आप अपनी फसल में देखते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उन्नत किस्मों की बुआई करनी है। उन्नत किस्मों में आप ले सकते हैं पूसा पार्वती हो गई, केंटुकी वंडर है और कंटेंडर है। ये जो किस्में हैं ये पत्ता मुड़न रोग प्रतिरोधी किस्में मानी जाती है। और साथ ही साथ रोग वाहक कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियन 50 EC 10 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी का घोल बनाकर आप अपनी फ्रासबीन की फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कीट है जो फ्रासबीन की फसल को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है माइट्स कीट का। इसमें क्या होता है कि अगर माइट्स कीट का प्रकोप फ्रासबीन की फसल पर हो गया है तो पौधे के कोमल भागों से रस ये कीट चूसते हैं, हरापन उसका नष्ट कर देते हैं और पत्तों पर सफेद चकते बनने लगते हैं, पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। और इसका संक्रमण अगर हो गया है तो इसका संक्रमण होते ही मेलाथियान 750 लीटर, साइथियान 50 EC का छिड़काव करें और इसके बाद 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव दोबारा करें। 250 लीटर हेक्सा किल और कैल्थेन हिलफोन 18.5 EC को 750 लीटर पानी के घोल में मिलाकर प्रति हेक्टर आप छिड़काव करें। और कुलदीप जी, बिल्स्टर बीटल कीट ये भी फ्रास्बीन को काफी प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि ये कीट फूल और फलियों पर पलते हैं, जिससे फलियां कम लगती है। अगर इस कीट का प्रकोप फ्रासबिन पर हो गया है तो फसल पर फैन वैली रेट 0.01%, 375 मिलीलीटर, सुमिसीडन फैनवेल, एग्रोफेन 20 EC या मोनोक्रोटोफॉस 0.02%, या फिर साइपर मेथ्रीन 0.00075%, या डेल्टा मैथ्रीन 0.00028% का प्रति 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर आप छिड़काव करें।
1: जी किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं फ्रासमिन में लगने वाले कुछ कीटों के बारे में। तो देखिए बीन बग है जो आपकी इस फसल को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो छोटे कीट होते हैं या बड़े कीट होते हैं ये पत्तों की निचली तरफ से रस चूसते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप हो जाए तो ये जो भाग है ये पूरा का पूरा पीला पड़ जाता है और आपकी जो फ्रास्बीन की फसल के पत्ते गिर जाते हैं। तो बीन बग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है कि फूल आने और फल बनने से पहले फसल पर मोनोक्रोटोफॉस 0.002% 750

मिलीलीटर, मोनोसिल मिल्फॉस मोनोक्रोटोफॉस 36 SL, 50 मिलीलीटर न्यूवॉन 40 EC या फिर डाइमेथियोट 0.03%, 750 मिलीलीटर रोगर 30 EC या फिर मिथाइल डेमिटोन 0.025%, 750 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स 25 EC या फेनवेलिरेट 0.01%, 375 मिलीलीटर सुमिसिडीन फेनबेल एग्रोफेन 50 EC को 750 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। तो देखिए हेमराज जी, ये तो हुई अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत, फ्रास्टबिन की कौन सी उन्नत किस्में लगा सकते हैं और साथ ही साथ कौन से रोग और कीट जो है वो आपकी फ्रास्टबिन की फसल को हानि पहुंचाते हैं। तो इस जानकारी के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक प्यारे से लोकगीत का। तो आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।

0: भाइयों, अभी आपने सुना समूह स्वरों में ये लोकगीत। तो लोकगीत के बाद अब समय आ गया है आपको एक जानकारीपूर्ण बातचीत सुनाने का। जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय है आधुनिक समय में गाय की उपयोगिता। रोहिताश चंद्र से बातचीत करेंगी निशा शर्मा।
1: किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में हमारा जो आज विषय है वो है आधुनिक समय में किसानों के लिए गाय की उपयोगिता। और इसी संदर्भ में हमें अधिक जानकारी आज देने जा रहे हैं रोहिताश चंद्र। तो रोहिताश जी, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले आप हमारे किसानों को अपना पूरा परिचय दें, आप क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब कुछ बताएं।
2: मेरा नाम रोहिताश चंद्र है। मैं व्यवसायी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और आज तक मैंने कृषि या पशुपालन के बारे में जानकारी नहीं थी। 6 वर्ष पहले लगभग मैं रिटायर होकर बच्चों को काम संभालकर मैंने गाय पालन पर गौशालाओं में आना जाना शुरू किया और गाय पालन पर ध्यान दिया। और वहीं से मुझे अनुभव आया कि गाय का कल्याण जो है किसान के घर ही हो सकता है।
1: जी
2: गाय को पूरी खुराक गौशालाओं में नहीं मिलती है और उसका पोषण ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे उसकी आगे की जनरेशन भी ठीक नहीं होती है।
1: जी
2: तो इस दृष्टि से मैंने गाय पर काम करना शुरू किया और उसी वक्त हमें पता लगा स्वदेशी गाय और विदेशी गाय।
1: अच्छा
2: स्वदेशी गाय का दूध बहुत ही बढ़िया है, बहुत सी बीमारियों को कम करता है, और विदेशी गाय के दूध से इम्यूनिटी कम होती है और इवन कैंसर तक के रोगों को भी निमंत्रण मिलता है। तो
1: अच्छा
2: उसमें मैंने काम करते हुए, स्वदेशी गाय में काम करते हुए, मुझे लगा कि हमारे यहाँ की पहाड़ी गाय जो है वो यहाँ की हजारों सालों से इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस मौसम में, यहाँ की जड़ी पत्तियों में डेवलप की है, उस पर काम हो। और अगर वो गाय ज़्यादा दूध देने लग जाए तो किसान उसको पालेगा, और क्योंकि किसान का हित और गाय के हित दोनों के मिलते हित हैं, इसलिए किसान की आमदनी में बढ़ावा होगा और गाय का भी कल्याण किसान के घर ही होगा।
1: जी तो देखिए रोहिताश जी, कौन कौन सी नस्लें जो हैं जिन पर आप काम करते हैं वो बताएं।
2: मैं स्वदेशी गायों में, मैंने जैसे आपको बताया कि पहाड़ी गाय है, ये गाय नस्ल जो है अभी तक केंद्रीय सरकार द्वारा नोटिफाइड नहीं हुई है, परंतु हम सब हिमाचल के रहने वाले, पहाड़ के रहने वाले लोग जानते हैं कि पहाड़ी गाय का दूध बहुत शुद्ध है,
1: जी
2: उसके दूध में बहुत ज़्यादा गुण है। तो पहाड़ी गाय को मैंने अडॉप्ट किया और उसका दूध कैसे बढ़े उस पर काम करने का पहला प्रयत्न किया।
1: जी तो इसके लिए आपने क्या-क्या कार्य किया? क्योंकि देखिए, गाय तो हमारा जो किसान है, हर किसान गाय पालता है, तो वो कैसे कर सकता है ये कार्य कि वो उसका दूध है, वो 2-4 लीटर दूध दे रही है, तो उसको बढ़ाना है, तो कैसे कर सकता है वो?
2: इसके लिए मेरा जो अनुभव हुआ उसमें यही अनुभव हुआ कि गाय को खुराक और सेवा चाहिए, और यदि ये दोनों चीज़ें उसको मिलेंगी तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और उससे ज़्यादा लाभ होगा। तो उसी दृष्टि से मैंने पहाड़ी गाय, कोई 7 वर्ष पहले एक गाय मेरे पास आई, उस पहाड़ी गाय पर ध्यान देना शुरू किया। और उसके साथ, क्योंकि उसका दूध बड़ा कम है और दूध बढ़ाने के लिए नस्ल को क्रॉस ही करना पड़ेगा, और किससे क्रॉस करना पड़ेगा, जो नस्ल ज़्यादा दूध देती है।
1: जी
2: पर उसी के बीच में हम स्वदेशी गाय पर काम कर रहे, तो इसलिए हमने जो हमारे पहाड़ के साथ का लगता एरिया पंजाब, वहाँ की बड़ी प्रसिद्ध नस्ल है, ज़्यादा दूध देने वाली है, साहीवाल, उसके साथ उसको क्रॉस करना शुरू किया।
1: अच्छा तो देखिए, हमारे किसानों को इससे क्या फायदा हो सकता है अगर वो भी करना चाहते हैं ये?
2: मैं जैसे निशा जी बता रहा हूँ कि मैं तो एक व्यवसायिक कम्युनिटी से था
1: जी
2: और कृषि का काम या पशुपालन का काम मैंने कभी देखा भी नहीं था, परंतु फिर भी मेरे उसमें सफलता मिली है। तो मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि वो अगर इस पर ध्यान दें तो उनकी बहुत अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है। इसमें कुछ नहीं करना है, विभाग में बहुत बढ़िया नस्ल के, बहुत बढ़िया इंजेक्शन पशुपालन विभाग के पास उपलब्ध होते हैं, और वहाँ से सिर्फ स्वदेशी गाय के नस्ल का इंजेक्शन उनसे लीजिए, उनसे इंजेक्ट करवाइए, और बस उसमें वो नस्ल बढ़ती जाएगी। इसके अतिरिक्त बस उसके खान पान का और सेवा पर ध्यान देना है।
1: जी खान पान की बात आपने रोहिताश जी की, तो आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि फीड वगैरह किस तरह से इन गायों को दी जाती है, क्या आम पशु की तरह या फिर कुछ अलग होता है?
2: मैं ये कहना चाहूँगा कि फीड थोड़ा अलग तो होता ही है, परंतु बाजार में अब फीड की इतनी क्वालिटीज आ गई हैं कि उसमें मिलावट वगैरह बहुत ज़्यादा है और उससे किसानों को रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि अपने

0: गौशाला में एक छोटी सी चक्की लगाई और जो हमारा पहले से गौओं के लिए अनाज वगैरह चलता रहा है, जिसमें कनक है, मक्की है, जौ है, बाजरा है, खल है, ऐसी चने का दड़ा है,
1: जी
0: ऐसी सब चीज़ों मिलाकर मैं उनका फीड बनाता हूँ और वो उनको फीड देता हूँ।
1: यानी कि बाहर की फीड आप इस्तेमाल नहीं करते, घर पे ही बनाते
0: जी
1: हो।
0: हाँ, बाहर की फीड मैं इस्तेमाल नहीं करता, अपना फीड बनाकर, वो सस्ता भी पड़ता है और उसकी क्वालिटी भी बढ़िया।
1: जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई भी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गांव में भी जगह जगह चक्कियां लगी होती हैं, लोग जहां आटा पिसवाते हैं वहां फीड भी पिसवा सकते हैं, है ना।
0: ये इसमें मतलब बल्कि मेरा कहना ये है कि मैं तो मुझे मैंने गांव में ज़मीन खरीदी और वहां जाकर फिर मुझे घास, पत्तियां और ये दाना, ये सब कुछ मुझे खरीदना पड़ता है। इसके अलावा मुझे कर्मचारी रखने पड़े, क्योंकि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और काम करने की आदत नहीं थी हमारी, तो
1: जी
0: मैंने कर्मचारी रखे हैं और कर्मचारियों के रखने के बाद भी मैं आज 2-3 सालों में इस स्थिति में आ गया हूँ कि लगभग खर्चा बराबर होने लगा है। तो यदि किसान, क्योंकि उसके पास अपने पत्ते हैं, अपना घास है, अपना दाना, पानी का बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास होता है, तो वो अगर ये काम खुद करेगा और उसने खुद करना है तो उसको मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है।
1: जी तो ये कार्य आप कर रहे हो रोहिताश जी, तो आप बताएं कि आपका मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है।
0: मेरा मुख्य लक्ष्य दरअसल, मेरे सारे जीवन में मेरा रुचि सामाजिक कामों में रही है और कई तरह के कामों में मैं भाग लेता रहा हूँ। तो मेरा अब ये स्थिति बनी थी कि ग्रामीण विकास में मैं ये देख रहा था कि किसान अपनी खेती बाड़ी का धंधा छोड़कर वो शहरों की ओर आ रहा है,
1: हाँ जी
0: और उसको जब स्टडी किया तो उसमें यही लगा कि उसकी खेती बाड़ी का खर्चा बहुत बढ़ गया है और उसकी आमदनी कम हो रही है
1: जी
0: और जिससे उसका गुजारा नहीं हो रहा है। तो उसमें मैंने जब स्टडी किया तो उसमें मुझे लगा कि किसान अगर इस गाय को अडॉप्ट करे तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और उसको अपने गांव में ही रहना पड़ेगा, शहरों की ओर नहीं आना पड़ेगा।
1: जी तो देखिए रोहिताश जी, हमारा एक आम किसान इस कार्य को शुरू करना चाहता है, अपनी गाय की नस्लें बदले या दूध अधिक प्राप्त करे, तो किस तरह से वो शुरू कर सकता है।
0: इसमें मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि वहाँ के पशुपालन विभाग के लोगों से वो संपर्क करें, डॉक्टरों से संपर्क करें। जो मेरा अनुभव रहा है, पशुपालन विभाग ऐसे कामों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है और वो हमेशा ठीक राय देता है। और दूसरा मेरा अनुभव ये रहा है कि जो शुद्ध गाय है, जैसे पहाड़ी शुद्ध गाय है, उसमें अगर क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर हम क्रॉस्ड गाय में वो क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे तो उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए शुद्ध गाय में, और वो पशुपालन विभाग के लोगों से मशवरा लेकर ये काम कर सकते।
1: और इसको शुरू करने में लागत क्या आ जाती है, कितना खर्चा हो जाता है।
0: देखिए, मैं जब ये काम शुरू किया था तो एक गाय से, वो मेरे पास आ गई थी किसी तरीके से, एक पहाड़ी गाय, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया कि भाई जो हम बोलना चाहते हैं या जो संदेश देना चाहते हैं वो लोग अब वो थ्योरी पर विश्वास नहीं करते, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। तो उस दृष्टि से मेरे पास एक गाय थी और उसको मैंने इंजेक्शन लगाकर और ये किया, परंतु मुझे ये जरूर करना पड़ा कि मुझे ज़मीन खरीदनी पड़ी गाँव में और वहाँ कुछ निर्माण करना पड़ा। परंतु किसान के पास तो ये सब कुछ है, तो वो अपनी ही गाय से या कोई भी पहाड़ी गाय आजकल बड़ी आसानी से लोग छोड़ रहे हैं, लोग देना
1: जी
0: चाहते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: वो उसको लेकर और उस पर काम करना शुरू करें।
1: जी, यानी कि लागत इसमें कुछ भी नहीं है।
0: बिल्कुल, किसान के लिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी लागत नहीं है और इससे फायदा ही फायदा है।
1: जी तो देखिए, गाय की बात की तो दूध के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बताएं आप थोड़ा सा।
0: हाँ, दूध के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि पशुओं के या दूध के क्वालिटी है, या दूध की जो साइंटिफिकल क्वालिटी है वो है A1 और A2। तो A1 मिल्क जो है वो ज़्यादातर विदेशी गायों का, ये विदेशी गायों के जो यहाँ से पैदा हुई है वहीं के एक रिसर्चर ने रिसर्च की है, उसका नाम था डॉक्टर कीथ, उसने रिसर्च की और उसने ही देखा कि ये जो जर्सी और दूसरी गायें हैं इससे बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उसने पता किया कि ये बैक्टीरिया किन गायों के दूध में नहीं है, और उसने जब वो रिसर्च की तो वो भारत और अफ्रीका की गायों में, तो उसने ये रिसर्च इसमें पाई और उसमें उस बैक्टीरिया, दूध के बैक्टीरिया का नाम दिया उसने A2। मैं लोगों को कहना चाहूँगा, जो लोग जान सकते हैं या कर सकते हैं, कि वो ऑनलाइन कभी देखें, गूगल में सर्च करें A1 A2 मिल्क, या जो डॉक्टर कीथ ने किताब लिखी है डेविल इन द

0: इसको पढ़ें, इससे उनको इस दूध के बारे में, A1 मिल्क और A2 मिल्क के बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाएगी।
1: जी, तो देखिए दूध के अलावा इसके और भी प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए जा सकते हैं।
0: जी, हम किसानों की इसमें दूध तीसरे तरीके से, एक तरीके से ये भी सहायता करना चाहते हैं कि ये जो स्वदेशी गाय है, या जिस हम यहाँ जिस

0: बनता है इससे, गोबर से, और बड़े अच्छी फर्टिलाइजर्स खाद तो बहुत होती ही है, बनती है, और अपना केंचुआ खाद बनती है। इसके अलावा जो गौमूत्र है, गौमूत्र से एक जो फ्रेश गौमूत्र है उसको अगर हम डिस्टिल करें, डिस्टिल करने से वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और वो दवाई की तरह बिकता है। 150 रुपये लीटर मैं खुद लेता रहा हूँ
1: जी।
0: इसी तरह गौमूत्र और गोबर मिलाकर बहुत सी खाद इत्यादि खेतों में डालने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स बहुत बन रहे हैं जिनका स्प्रे करने से बहुत से कीट मकोड़े खत्म हो जाते हैं।
1: जी, यानी कि हमारा किसान दूध के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके गोबर से, मूत्र से बना सकता है।
0: हाँ निशा जी, इसमें हमारा यही है, हमारा नेक्स्ट फेज में हमारा यही काम है कि इसकी प्रोडक्ट्स बनाना और उसके बारे में किसानों को ट्रेनिंग देना।
1: जी, तो रोहिताश जी, अब इसके अलावा आप हमारे किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग स्वदेशी गाय को अडॉप्ट करें और स्वदेशी गाय की प्रोडक्ट्स बनाएं और उसके दूध और बाकी प्रोडक्ट्स की बिक्री की व्यवस्था करें। ऐसी बहुत सी एजेंसियां भी अब आगे आ रही हैं जो इसमें सब में सहायक होंगी, तो उनको एक बहुत अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है।
1: जी, तो आधुनिक समय में किसानों के लिए गाय की उपयोगिता, रोहिताश चंद्र जी आपने इस विषय पर बहुत ही बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, अपने अनुभव भी उनसे साझा किए, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे यहाँ आकर किसान भाइयों को संबोधित करने का मौका दिया।
2: तो किसान और बागवान भाई बहनों, ये तो सुनी आपने जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था आधुनिक समय में गाय की उपयोगिता, और हमें इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे थे रोहिताश चंद्र और इनसे जानकारी हासिल कर रही थी निशा शर्मा। तो किसान भाइयों, ये तो सुना आपने किसान वाणी कार्यक्रम, तो इसी के साथ अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, जो आकाशवाणी शिमला से रिले किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सुना है हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना फिर शुरू होने वाली है?
3: हाँ बिल्कुल, जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और 17 से 31 अगस्त तक

0: se-snowbound.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त होने वाली SE ID को संभाल कर रखें और घर आने वाले प्रगणक को देना ना भूलें।
1: मैं अभी अपनी स्वगणना पूरी करती हूँ।
0: आप भी आज ही अपनी स्वगणना पूरी करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में बने फोर लेन में वाहनों की स्पीड लिमिट 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर करने पर विचार कर रही सरकार। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व पर सार्वजनिक अवकाश किया घोषित, महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा। और प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले का विपक्ष ने किया विरोध, सरकार का तर्क, एसओपी के साथ शुरू होगी लॉटरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के निर्माण में देश की खेल प्रतिभा और युवा शक्ति को जोड़ने का अभियान है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारत में खेल एक बेहतर करियर और पेशे के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि खेल केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि बेहतर प्रतियोगी बनना भी सिखाता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से सुना गया। सिरमौर जिला के कालाअंब में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का काम करेगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने खेलों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: पिछले 12 वर्षों में हमारे देश के युवाओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपना योगदान दिया, चाहे ओलंपिक्स गेम है, चाहे पैरालंपिक्स है या दूसरे गेम्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं से आह्वान किया कि हम सबको अपना अधिक से अधिक समय खेलों में हिस्सा लेने में व्यतीत करते हुए नशे से मुक्त भी हमारा युवा रहे। विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें भी इस देश का युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से आह्वान किया।
0: उधर कांगड़ा में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं व खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा, अनुभव और विचार साझा करने के लिए बेहतर मंच प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में बने फोर लेन में वाहनों की स्पीड लिमिट बढ़ाई जाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी फोर लेन में स्पीड प्रति घंटा 60 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि स्पीड के कारण फोर लेन में कोई दुर्घटना ना हो, और इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से सर्वे कराया जाएगा। विधायक मलिंद्र राजन के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्पीड़न मामले पर शिकायत दर्ज करने को लेकर सरकार नया नियम बनाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायत को गोपनीय रखने के लिए नियम बनाए जाएंगे, ताकि महिलाएं अपनी शिकायत को पूरी तरह व्यक्त कर सकें। विधायक राकेश कालिया के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों के दौरान 7,59,05,479 पर्यटकों का आगमन हुआ है। विधायक विक्रम सिंह और सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने

0: जानकारी दी है कि वर्ष 2023 की आपदा के लिए विशेष राहत पैकेज अधिसूचित किया गया था। प्रदेश में रक्षाबंधन के पर्व पर कल 28 अगस्त को सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में ये घोषणा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और भावनाओं से जुड़ा विशेष पर्व है। ऐसे में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अवकाश देने का निर्णय लिया गया है ताकि सभी लोग इस त्यौहार को साथ मिलकर मना सके। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। इसके तहत महिलाओं से प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिए सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
1: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
2: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
1: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
3: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
4: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रदेश सरकार ने राज्य में 12 से 15 वर्ष की आयु वाले अनुबंधित यात्री वाहनों यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल के संचालकों को फिलहाल राहत दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा और वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर आज सदन में वक्तव्य के माध्यम से सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर अनुबंधित यात्री वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष नहीं कर सकती और मोटर वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में केंद्रीय प्रावधान में बदलाव के बिना राज्य स्तर पर आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लेना संभव नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के तहत वाहनों की निर्धारित आयु सीमा 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष की गई है और ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ऑपरेटर्स के आग्रह पर केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय आने तक 12 से 15 वर्ष की आयु वाले ऐसे वाहन जो प्रदेश की सीमा के भीतर संचालित होते हैं के चालान न करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में दीपावली से पहले लॉटरी शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने निजी फायदे के लिए युवाओं को बर्बाद कर रही है। वहीं सरकार ने तर्क दिया है कि प्रदेश में लॉटरी एसओपी के साथ शुरू की जाएगी। विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लॉटरी भाग्य का खेल है और किसी व्यक्ति पर इसे खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है। जिसकी इच्छा होगी वही लॉटरी खरीदेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर दिए गए पत्र और उठाए गए सवालों पर भी गौर किया जाएगा।
6: कोई फोर्स नहीं है कि किसी को लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा। जिसकी इच्छा है, जिसकी चाहत होगी वो लॉटरी ले, जिसकी इच्छा नहीं होगी, जिसकी चाहत नहीं होगी वो ना ले।
0: दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी आर्थिकी सुधारने के लिए लॉटरी को फिर से शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉटरी के कारण प्रदेश में पहले भी कई घर बर्बाद हुए हैं और इसी कारण भाजपा सरकार ने इसे बंद किया था। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार युवाओं को बर्बाद करने के लिए लॉटरी शुरू कर रही है।
7: जो लोग इस लॉटरी को जबरदस्ती लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, साफ मंशा यही जाहिर होती है कि आप इसके पीछे प्रदेश का आर्थिक हित नहीं, अपना निजी आर्थिक हित। और लॉटरी जब बंद की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोगों के घर बिक गए, जमीन बिक गई, जेवरात बिक गए, चाहे वो नशा चिट्टे का है, चाहे वो नशा किसी दूसरी चीज का है, उसी तरह का ये नशा। और इस लत में कोई आदमी अगर लग जाता है तो उसे मालूम नहीं पड़ता कि वो कितना नुकसान कर रहा है। नहीं, हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी जो है वो बर्बादी की ओर बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। इस सारी चीज को लेकर के सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस वक्त लॉटरी की शुरुआत करके एक नया रास्ता उस तरह से बर्बादी के लिए खोलना चाहिए।
0: कांगड़ा जिला के देहरा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कुलवंत सिंह पोटन ने नोडल अधिकारियों से मतदाता जागरूकता गतिविधियों को समाज व समुदाय तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज देहरा में ELC 2.0 लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कुलवंत सिंह पोटन ने लोकतंत्र को अधिक जीवंत व सहभागी बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कार्यशाला का आयोजन इलेक्शन कानूनगो रीमा ठाकुर व इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब नोडल अधिकारी डॉ. प्रवीण द्वारा किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में बने फोर लेन में वाहनों की स्पीड लिमिट 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर करने पर विचार कर रही सरकार। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व पर सार्वजनिक अवकाश किया घोषित, महिलाओं को HRTC की बसों में निःशुल्क यात्रा। और प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले का विपक्ष ने किया विरोध, सरकार का तर्क, SOP के साथ शुरू होगी लॉटरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
8: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
9: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
8: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
9: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
8: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
10: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में प्रशामक राजपत्रित कर्मचारी के 42 पदों को बैच वाइज जॉब ट्रेनी के आधार पर कुल वेतन मूलतः 12,120 रुपये प्रतिमाह की दर से भरे जाने हैं। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षु नीति के तहत विभाग में व्यवहारिक कार्य अनुभव के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक मुख्य अग्निशमन अधिकारी हिमाचल प्रदेश बारनेस कोर्ट शिमला 2 के कार्यालय में दिनांक 10 सितंबर 2026 को सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदक का संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए। दिनांक 10 सितंबर 2026 के उपरांत प्राप्त आवेदन तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाण प्रमाणित प्रतियां संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया दिनांक 21 सितंबर 2026 से प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए कार्यालय में दिनांक 21 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे मूल प्रमाण पत्रों उनकी एक एक अनुप्रमाणित प्रति सहित उपस्थित होना होगा। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। पदों का शनिवार ब्यौरा इस प्रकार से है। सामान्य वर्ग के लिए 24 पद, इसमें सामान्य श्रेणी में 15 पद, EWS के लिए 5 पद, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 9 पद, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7 पद, BPL के लिए 1 पद, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 2 पद, इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद, बीपीएल के लिए 2 पद और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद। सामान्य वर्ग के लिए

0: आयु दिनांक 1 जनवरी 2026 को 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रोजगार समाचार अभी आपने सुने, हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब आकाशवाणी शिमला से विधानसभा समीक्षा रिले की जाएगी।
2: प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान आज सदन में माहौल सामान्य रहा। इतने दिनों तक सत्ता पक्ष व विपक्ष रोजाना आपस में राष्ट्रगान व अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा करता आ रहा था, लेकिन आज सदन की कार्यवाही सामान्य तौर पर चली। आज सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान पक्ष व विपक्ष के सदस्यों ने सरकार से अपने अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों और विभागीय विकास कार्यों को लेकर सवाल जवाब किए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की आम जनता को तोहफा देते हुए प्रदेश भर में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद अब रक्षाबंधन के मौके पर महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहनों को भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाना पड़ता है, लिहाजा सरकार ने रक्षाबंधन पर पूर्ण अवकाश का निर्णय लिया है। उधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को HRTC की बसों में पूरी तरह मुफ्त यात्रा का ऐलान भी किया। रक्षाबंधन पर अवकाश को लेकर बाद में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। इसके तहत अब शुक्रवार को सभी सरकारी विभाग और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। दूसरी तरफ राखी बांधने के लिए बसों में आने जाने वाली महिलाओं को मुफ्त यात्रा के संदर्भ में भी HRTC प्रबंधन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत महिलाओं को प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिए सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि महिलाएं जहां भी बस को रोकेंगी उन्हें बिठाना आवश्यक होगा। पड़ोसी देश नेपाल में गत दिन आई प्राकृतिक आपदा में काल का ग्रास बनी मानव जिंदगियों के लिए विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के बाद इस बारे में अपनी बात सदन में रखी। उन्होंने कहा कि नेपाल में आई त्रासदी ने कई जिंदगियों को छीन लिया है, जिनमें भारत सहित अन्य देशों के भी नागरिक हैं। सदन की सहमति के बाद विधानसभा ने नेपाल त्रासदी के मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ देर का मौन भी रखा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में महिला उत्पीड़न की शिकायतें अब पूरी तरह से गोपनीय रहेंगी। हर शिकायत पर जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि सरकार महिलाओं के प्रति पूरी सम्मान रखती है। महिलाएं कई बार अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाती, इसीलिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये बात उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कही। इससे पहले सवाल के मूल जवाब में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकारी अर्ध सरकारी निजी कार्यस्थलों और शिक्षण संस्थानों में महिला उत्पीड़न के 131 मामले दर्ज हुए। इनमें से 37 मामलों में कार्रवाई की गई, जिनमें से 3 को सेवा से बर्खास्त भी किया गया। 1 मामले में गंभीर दंड और 1 मामले में सेवा से निलंबित किया गया, जबकि 2 मामलों में FIR और 2 मामलों में चार्जशीट किया गया। इसी तरह 9 मामलों में कर्मचारियों के तबादले किए गए और 19 मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया, जिसमें माफीनामे के साथ चेतावनी जारी की गई। प्रदेश सरकार राज्य में दशकों पहले स्थापित पनबिजली परियोजनाओं के पास सरप्लस जमीन को वापस लेने के मुद्दे पर सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में ऐलान किया कि यदि BBMB राज्य की सरप्लस जमीन वापस नहीं देती है तो इसे सरकार में निहित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। हमारे यहाँ का पानी हिमाचल की संपदा है और ये प्रदेश के लिए सोने के समान है। सरकार इसकी हर कीमत पर रक्षा करेगी। मुख्यमंत्री विधानसभा में गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत विधायक डॉ. जनक राज द्वारा प्रदेश में निर्माणाधीन और संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरण जैसी

0: समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कदम उठाने को लेकर लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। सरकार ने विपक्ष के इस संकल्प को अपनाने का फैसला किया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जिसे प्रदेश हितों की रक्षा के मद्देनजर केंद्र को भेजने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। हिमाचल में बिजली परियोजनाएं लगाने वाली एनएचपीसी और एसजेवीएन जैसी संस्थाएं अरबों रुपए की कंपनियां बन गई, लेकिन हिमाचल गरीब रह गया, जो हमें मंजूर नहीं। इसके लिए सरकार ने सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध जैसी परियोजनाओं को वापस लेने का फैसला लिया। इसी तरह बैरा स्यूल परियोजनाओं को वापस लेने के लिए भी कानून का सहारा लेने का फैसला किया और इसके लिए देश के वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं में जहां जहां बांध बने हैं वहां से अब स्थानीय लोगों को पीने अथवा सिंचाई के लिए पानी लेने के लिए किसी भी कंपनी या संस्था से मंजूरी की जरूरत नहीं। हरियाणा ने बीबीएमबी में हिमाचल के बकाया हिस्से को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया है और केंद्र सरकार ने भी इसे मान लिया है, जबकि पंजाब ने आधा अधूरा हलफनामा दिया है। ये मामला सुलझाने के बाद ही हिमाचल सरकार किशाऊ बांध परियोजना पर आगे बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार ने राज्य में स्थापित बीबीएमबी के सभी प्रोजेक्टों की डी सिल्टिंग खुद करने का फैसला लिया है, जिससे प्रदेश को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी। इससे पहले संकल्प पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक डॉ. हंसराज ने कहा कि बैरासियूल चमेरा एक और चमेरा दो परियोजना में सीएसआर के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि ये पैसा सही जगह खर्च नहीं हो रहा है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि बिजली परियोजनाओं में सरप्लस जमीन को वापस लेकर विस्थापितों को दिया जाए। चर्चा में विधायक सुरेंद्र शौरी, लोकेंद्र कुमार, त्रिलोक जम्वाल ने भी हिस्सा लिया। उधर प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रक्कड़ परागपुर में उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन है। भाजपा शासन में इसमें से कुछ भूमि पर परिवार को सूचित किए बगैर जल शक्ति विभाग ने पानी के टैंक बना दिए। इस जमीन पर क्रशर लगाया जा सकता था, लेकिन टैंक के 500 मीटर के दायरे में खनन की इजाजत नहीं मिलती। उनके बड़े भाई ने इस जमीन को सरकार को न देने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई को इसके लिए राजी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्कड़ परागपुर में 50 लाख रुपए प्रति कनाल जमीन की कीमत है। उनके परिवार की जिस भूमि पर टैंक बनाया गया, सरकार ने उनकी 10 कनाल जमीन 18 लाख रुपए में ली और ये काफी कम दाम है, जिसका भुगतान पूर्व भाजपा सरकार के समय हुआ। उनका कहना था कि भू अधिग्रहण के लिए बनी कमेटी की सिफारिशों के बाद ही इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मुख्यमंत्री ने ये बात विधानसभा में भाजपा के आशीष शर्मा के मूल और विक्रम सिंह ठाकुर के अनुपूरक सवालों के जवाब के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस सवाल के पीछे मंशा भी ठीक नहीं है। इस जमीन की जांच ईडी भी कर चुकी है। इससे पहले विपक्ष के आशीष शर्मा ने रक्कड़ परागपुर में जल शक्ति विभाग द्वारा ली गई भूमि के अधिग्रहण का मामला उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये सवाल पहले भी सदन में लग चुका है। जिस जमीन का जिक्र किया गया है वो चार लोगों से खरीदी गई थी और मामला हाईकोर्ट तक भी गया था। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि प्रदेश सरकार शिमला मटौर व प्रदेश के अन्य फोरलेन निर्माण के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले जमीन के पैच की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन करने का मामला केंद्र से उठाएगी। केंद्र सरकार ने नई शर्त लगाई है, जिसके चलते अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा प्रदेश सरकार को ही देना होगा। सरकार यदि भू अधिग्रहण की लागत वहन करती है तो वो टैक्स भी वसूलेगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विधायक पूरन ठाकुर के मूल और भुवनेश्वर गौड़ व चंद्रशेखर के अनुपूरक सवालों के जवाब के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले पर गंभीर है, क्योंकि फोरलेन निर्माण एनएचएआई करता है। इसके लिए भू अधिग्रहण भी उसी का जिम्मा है। फोरलेन पर टोल भी वही वसूलते हैं, लिहाजा सरकार केंद्र से भू अधिग्रहण की लागत वहन करने की नई शर्त पर दोबारा विचार करने का मामला उठाएगी। इससे पहले विधायक पूरन ठाकुर के मूल प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले फोरलेन से हुए नुकसान की भरपाई का मामला एनएचएआई के समक्ष उठाएंगे। मंडी उपायुक्त को भी इस बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा में विधायक हरदीप सिंह बाबा द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान चर्चा का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब ऐसे उद्योगों को मंजूरी नहीं मिलेगी जिनमें पानी और बिजली की अत्यधिक खपत होती है और जो पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित करते हैं।
1: विधानसभा समीक्षा अभी आपने सुनी। लेखक रविंद्र पंवर, न्यूज एडिटर दैनिक भास्कर हिमाचल प्रदेश और वाचक प्रभा शर्मा।
2: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा, जो आकाशवाणी शिमला से रिले की जा रही थी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान का गाया हुआ ये गीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम व साथियों की गाई ये कवाली। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम सूचना सुनिए श्रोताओं। इस बार रविवार दिनांक 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा खेल के दौरान होने वाली चोटें और उपचार से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न। स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर साहिल कुमार अस्थिरोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 30 अगस्त 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फोन नंबर है 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। फोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 30 अगस्त 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम पंजाबी गीत सतिंदर सरताज की आवाज में आपके रेडियो सेट्स पर।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म से ये देशभक्ति गीत सोनू निगम का गाया हुआ।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज 8:09 रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास

0: तेज, लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111238817819 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199681918 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9779851386 9779701075 और 9779801032611 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू स्वांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
2: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत

0: को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: Discussions are expected.
3: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इस पे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
2: स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
4: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है।
5: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं, तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
6: रजनीभाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
3: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
1: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लेन क्रिंक्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1,300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-Series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and hosts Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project, as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
5: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side.
4: Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which will function round the clock. He said Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up 24/7 helplines. On the Indian nationals stranded on the Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation.
6: The Chinese side, the number of Indians who had gone on the Kailash Mansarovar Yatra are currently stranded on the Chinese side. Our embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. There are approximately 200 Indian nationals there who have sought our assistance for evacuation. Of them, 95 are in Darchan and currently proceeding to Hilsa to cross over into Nepal. 4 are in Geelong city, 13 Zutulpuk, and they are en route to the town of Saga, and 60-70 others who are also heading towards Saga. Our mission is in touch with local authorities and they are doing their best for their rescue and evacuation.
4: The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist the people. The control room can be contacted at +9111-2308-8718, +9111-2308-8719. For WhatsApp calls and messages, the number is +91 9968 291 988. It can be contacted. The emergency contact numbers of the Indian Embassy in Kathmandu are +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and 977 981 032 6117. The flash floods were caused after an avalanche blocked the flow of the Lende tributary of the Bhotekoshi and first hit Timure near Nepal's border with China at Rasuwagadhi. The National Disaster Response Force, NDRF, today said the devastating flash floods in Nepal have so far had

आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस बेवाक और बहुमुखी अभिनेत्री की जिसने मॉडलिंग से लेकर अभिनय, होस्टिंग और अब पॉडकास्टिंग तक हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेहा धूपिया की। नेहा धूपिया का जन्म 27 अगस्त 1980 को केरल के कोची शहर में हुआ था, एक पंजाबी सिख परिवार में। उनके पिता प्रदीप सिंह धूपिया भारतीय नौसेना में अधिकारी थे, इसी वजह से नेहा की स्कूली पढ़ाई कई शहरों में हुई। उन्होंने नेवल पब्लिक स्कूल और दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षा पाई और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल की। शामिल कर रहे हैं इन्हीं पर फिल्माया गया एक और प्यारा सा गीत। आवाजें हैं श्वेता विजय और सुधांशु पांडे की।

नेहा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और म्यूजिक वीडियो से की। इस जीत ने नेहा के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। साल 2003 में उन्होंने हिंदी फिल्म क्यामत सिटी अंडर थ्रेट से अपने बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद जूली रक्त, क्या कूल हैं हम, सिंग इज किंग, तुम्हारी सुल्लू और ए थर्सडे जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अभिनय के अलावा नेहा एक कुशल होस्ट के रूप में भी जानी जाती है। उन्होंने कॉमेडी सर्कस, रोडीज और कई अन्य टीवी शोज की मेजबानी की।

नेहा धोपिया की निजी जीवन की बात करें तो नेहा ने मई 2018 में अभिनेता अंगद बेदी से शादी की। इस जोड़े के दो बच्चे हैं, बेटी मेहर और बेटा गुरिक। मॉडलिंग की दुनिया से निकलकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली और आज भी लगातार नए प्रयोगों के लिए जाने वाली नेहा धोपिया आज की पीढ़ी के लिए मेहनत और आत्मविश्वास की एक मिसाल हैं। तो दोस्तों, ये थी नेहा धोपिया के सफर की एक झलक। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। मिलेंगे इसी कार्यक्रम में इसी दिन, तब तक के लिए नमस्कार। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, रात्रि के 9:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी और गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम रंगे गजल।

इस कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन की गाई इस गजल के साथ।

रंगे गजल ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एक धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की गाई ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की मिलीजुली आवाजों में ये गजल। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडेकर की गाई ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंगे गजल, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं हिमाचली गीत, लोकगीत।

ये थी कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति वर्षा कटोच की आवाज में। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 और 25 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: छबीली इस फिल्म में आइए अब सुनते हैं हेमंत कुमार को। संगीत है स्नेहल भाटकर का।

अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: चंगेज खान इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।
1: प्यार की आवाज से।
0: चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के।

0: ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति नवरंग फिल्म से। आवाजें थी महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। बोल थे भारत ब्यास के। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आस कब तक रहेगी अधूरी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
3: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसर

सरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111-23088718 और +9111-23088719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।